आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी हैं। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456551 या 9707-06-575।
10: श्रोतागण सुप्रभात, प्रणाम। ई है रेडियो रिमझिम 90.4 MHz। आ कार्यक्रम चल रहल बा आपन दी आपन देखभाल। तो दोस्त लोग, रउआ तो पता ही बा कि ई कार्यक्रम लेके आवेली राउर दोस्त दीपाली, जे में हम बतावेनी रउआ स्वास्थ्य की और बेहतर बनावे खातिर कुछ हर्बल उपाय। अब श्री गणेश कही जाओ आज के शो के। दोस्त लोग, आज हम बताए सबसे पहले गला के रोग से निजात पावे के कुछ घरेलू नुस्खा। दोस्त लोग, हमनी में से बहुत लोग के, जैसे खासकर बच्चा के, अक्सर सर्दी खांसी हो जाला। ये बहुत ही साधारण बीमारी होला व कुछ दिन रह के ये ठीक हो जाला। ई एगो सामान्य बात है, परंतु एके दुर्गामी परिणाम भयावह होला, वो है गला के इन्फेक्शन। परंतु हृदय के बल्ब तथा किडनी एके शिकार हो सकेला। एगो विशेष कीटाणु के खिलाफ शरीर के प्रतिरोधक शक्ति द्वारा बनावल होखल इम्यून कॉम्प्लेक्स हृदय के बल्ब या किडनी के ऊपर अटैक कर देला। ऊपर होखल असर के कारण उनके द्वारा रक्त के शुद्धिकरण के क्रिया पर असर होला। एके नेफ्राइटिस भी कहल जाला। ई वजह से गुर्दा कुछ समय खातिर फेल हो जाला, मूत्र कम बनेला और उनमें खून भी आवेला। हाथ पैर में सूजन आवेला और ब्लड प्रेशर बढ़ जाला। ज्यादातर केस में ये तकलीफ उपचार से ठीक हो जाला, किंतु परंतु बार बार के इन्फेक्शन से या एक बार में ही ज्यादा संक्रमण होके तक गुर्दा भी फेल हो सकेला। वही तरह हृदय के बल्ब पर एकर असर होला, तो कालांतर में बल्ब या तो सिकुड़ जाला या ओकर कंपन गति कमजोर हो जाला। जेकरा वजह से खून के संचालन में बाधा आवेला, खासकर बाएं तरफ के बल्ब में ये खराबी होला, जिसे माइट्रल या एरोटिक कहल जाला। कई बार हृदय ई वजह से फूले लगेला या खून के प्रेशर उसमें बढ़े लगेला, अतः जब भी गला खराब हो उसकी गंभीरता से ली। बुखार के दवा के साथ साथ एंटीबायोटिक के पूरा मात्रा में सेवन करी, वैक्सीन लगावे से भी इन्फेक्शन के रोकथाम कही जा सकेला। खान पान के तरफ ध्यान दी, विटामिन सी के सेवन करे से बीमारी से रुआ बच सके। तंग बस्ती में रहे वाला तथा जहाँ पर वायु प्रदूषित होके वहाँ ये बीमारी ज्यादा होला। अगर हृदय के बल्ब खराब हो गए होके तो लंबा समय तक हृदय रोग के दवाई के साथ पुनः इन्फेक्शन ना हो, एक खातिर पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक निश्चित मात्रा में समय समय पर लगावे के पड़ेला। इसे एलर्जी होके तो अन्य एंटीबायोटिक के सेवन करे के चाहिए। समय समय पर हृदय के चेकअप से बल्ब के स्थिति के अंदाजा लगावल जा सकेला। कालांतर से अगर खराबी ज्यादा होके तो बल्ब के ऑपरेशन भी करे के पड़ सकेला, अतः सावधानी बरती और गला के खराबी से बची। दोस्तों चली अब हम बताएं महिला लोग के ब्यूटी खातिर कुछ नुस्खा। यदि खोजल जाए तो खूबसूरती के निखारे खातिर आजकल बाजार में जितना उत्पादन बा उसे कहीं अधिक विकल्प प्राकृतिक चीज से रूप निखारे खातिर मिल जाए। आज भी कई पारंपरिक नुस्खा और प्राकृतिक चीज सौंदर्य के बरकरार रखे खातिर इस्तेमाल कई जाला। वैसे आज भी प्राकृतिक चीज के कोनो तोड़ नहीं के, ये भी मानल जाला कि एके इस्तेमाल से कोनो साइड इफेक्ट ना होला और ये आसानी से हमनी के बजट में भी आ जाला। चलिए अब हम बता दी वो घरेलू नुस्खा जिसे रउआ आपन खूबसूरती के संवार सके। दोस्तों शहद से भी त्वचा दम केला, शहद के ओरिजिन पोलैंड से मानल जाला। दरअसल यूरोप में कड़ाके की सर्दी होके के कारण त्वचा के विशेष देखभाल की जरूरत होला। सर्दी में चमकत त्वचा पावे खातिर 30 मिनट तक चेहरा पर शहद लगा के रखी। आ चेहरा के साथ रुआ होठ पर भी शहद लगा सकता नहीं, इसे होठ की कोमलता भी बरकरार रही। यदि राउर त्वचा शुष्क और अत्यधिक संवेदनशील होके तो शहद के हल्का गर्म करके लगाई। कोलेस्ट्रॉल ऑयल के प्रयोग से रुआ अपना आँख के पलक के भी सुंदर बना सकता नहीं। पलक के घना और लंबा बनावे खातिर कैस्टर ऑयल उपयोग में लाई। प्रतिदिन रात के सूते से पहले पलक पर कैस्टर ऑयल के लगाई। स्प्रंग वाटर के विकल्प के तौर पर रुआ बॉटल वाला मिनरल वाटर भी इस्तेमाल कर सकता नहीं। मिनरल वाटर से चेहरा धोए पर ताजी के एहसास तो होला ही, साथ ही इसे चेहरा पर मॉइस्चराइजर बनल रहेला और सूजन व चेहरा पर आई लालीपन दूर होई। दोस्तों नारियल के तेल उपयोग करे से राउर बाल भी रेशम जैसन बनल रही, जैसे भारतीय महिला के घना लंबा और काला बाल के खूबसूरती के राज है नारियल तेल। नारियल तेल के हल्का गर्म करके सिर में अच्छा से मालिश करी और सुबह सिर धोली। बाल के स्वस्थ और चमकदार रखे के इस सबसे कम खर्चीला उपाय है। बाल के समय समय पर तेल से मालिश करे से दुमोहा बाल की समस्या से भी निजात मिलेला। हो सकेला राउर ये जानकारी थोड़ा अजीब लागे, लेकिन ये सच है कि ब्राजील के महिला अपना शरीर पर आ गए थोड़ा सा वसा के कम करे खातिर सैंड यानी रेत के इस्तेमाल करे लालो। ब्राजील में महिला सैंड यानी बालू के अपना शरीर पर रगड़े लालो, एकरा के एक तरह से बालू स्पा भी कहल जाला। वहां के महिला के मानल बा कि बालू के शरीर पर रगड़े से त्वचा के कुछ गर्मी मिलेला और इसे शरीर के अतिरिक्त वसा कम होला और साथ ही त्वचा मुलायम और चमकदार बनेला। चमकावे खातिर व्हाइट टी भी बहुत कारगर है, जिसे चाइना के महिला अपना बाल के चमकदार बनावे खातिर व्हाइट टी के भी इस्तेमाल करे लालो। चाइना में पाए जाए वाला कैमेलिया के पौधा में व्हाइट टी मिलेला। ये पौधा के कली पूरा तरह खुले से पहले व्हाइट रंग के नजर आवेला। एके व्हाइट टी कहल जाला। चाइना में महिला व्हाइट टी के रोजमेरी ऑयल के साथ इस्तेमाल करे लालो। एक तरह से व्हाइट टी और रोजमेरी ऑयल बाल के कंडीशनिंग में इस्तेमाल कई जाला, इसे बाल स्वस्थ और चमकदार नजर आवेला। तो दोस्त लोग आज खातिर बस इतना ही, काहे कि अब समय हो गई बा कि हम ली रउआ से जाए के अनुमति। तो हंसी खुशी के साथ आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के इजाजत, रखी रउआ आपन सेहत के ख्याल, आजमाई ये सब नुस्खा के। नमस्कार।
11: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
12: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
13: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
14: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
15: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
13: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
12: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
13: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
15: कॉल करें 87-894-18744।
16: ठक ठक।
17: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
18: अच्छा मिला ही नहीं।
17: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
19: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
17: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
19: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
20: आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है Fever FM Production।
16: नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा।
21: यस यस ऑफ कोर्स दैट विल बी डन श्योर। ऑलराइट बाय।
22: हेल्प?
21: सॉरी,
22: आप ऐसे हाईवे पर रुके हैं तो आई आस्क्ड हेल्प।
21: अरे नो, आई हैड दिस रियली अर्जेंट वर्क कॉल टू टेक, इसीलिए।
22: ओके, गुड डे।
21: या यू टू, थैंक्स।
22: It's okay, I can help you.
21: Thank you.
22: By the way, I'm Neil.
21: I'm Apoorv. मैं एक बहुत important meeting में जा रहा था and you know this. I mean, I think I have to cancel the meeting now.
22: कोई बात नहीं, I think अच्छा ही है. Sunday के दिन meetings cancel ही होनी चाहिए.
21: Sunday? Oh, आज Sunday? याद ही नहीं था यार.
22: अजीब बात है. आपकी family को इस बात से कोई problem नहीं होती?
21: Dad को है, but क्या करूं? काम सबसे इम्पोर्टेंट है।
22: हाँ, ऑफ कोर्स काम इम्पोर्टेंट है, बट फैमिली को टाइम देना भी तो इम्पोर्टेंट है ना।
21: फैमिली कैन वेट, काम की उम्र निकल जाएगी ब्रो। मुझे लगता है कि अभी 24 आवर्स अ डे मुझे तो सिर्फ काम करना चाहिए, फैमिली का क्या है।
22: आई एम श्योर, सॉरी टू इंटरफियर, बट 24 आवर्स, डोंट यू थिंक इट्स अ बिट मच? एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड।
21: आई डोंट नो, आई डोंट एग्री विद दिस। अरे यार, ये डैड क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं? अरे यार डैड, ओह नो, चलो चलो गाड़ी में चल के बैठते हैं।
22: थैंक यू मिस्टर अपूर्व, आपने मुझे शेल्टर दे दिया।
21: अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो? एनीवे, व्हाट डू यू डू?
22: आई एम अ ट्रैवलर, स्टोरी टेलर।
21: वाओ, वैसे कैसी स्टोरी सुनाते हो? अब सिंस बारिश की वजह से रुके हुए हम, कहानी ही सुना दो भाई।
22: अब हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको भगवान शिव और माँ काली की कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले राक्षसों ने देवों पर चढ़ाई कर दी थी। देवों और राक्षसों में घमासान युद्ध चल रहा था।
23: आक्रमण!
24: अरे ये असुर तो पीछे नहीं हट रहे इंद्रदेव।
25: हाँ इंद्रदेव, वो रक्त बीज हमारी सेना को दबे जा रहा है।
24: ऐसा ही होगा, इस धरती पर असुरों का ही अधिकार होगा।
25: नहीं, हम इन तुच्छ असुरों से कैसे हार सकते हैं?
24: रक्त बीज कोई साधारण असुर नहीं है देव, उसे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है।
25: वरदान? कैसा वरदान?
24: जब भी रक्त बीज के रक्त के बूंद धरती पे गिरेंगे, उससे और हजारों रक्त बीज पैदा होंगे, इसीलिए हम उन्हें हरा नहीं पा रहे हैं।
25: हे ब्रह्मदेव, ये क्या किया आपने? रक्षा करें हमारी ब्रह्मदेव, रक्षा करें।
26: रक्षा करें ब्रह्मदेव, रक्षा करें।
27: इंद्रदेव, मैं अपना वरदान वापस तो नहीं ले सकता, किंतु रक्त बीज को माँ शक्ति अवश्य परास्त कर सकती है।

0: हे माँ शक्ति, हे माँ दुर्गा, रक्षा करें हमारी।
1: इंद्रदेव, किससे रक्षा चाहिए आपको? क्यों पुकार रहे थे मुझे?
0: हे देवी, रक्त बीज ने सारे असुरों के साथ मिलकर हम पर चढ़ाई कर दी है।
1: तो ये बात है, मैं युद्ध करूंगी उससे।
2: बोलो माँ दुर्गा की
3: जय!
2: माँ दुर्गा की
3: जय!
1: रक्त बीज, यहाँ से तुरंत वापस जाओ, ये तुम्हारे जीवित रहने का अंतिम अवसर है।
4: अंतिम अवसर? मैं रक्त बीज हूँ, मुझे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती।

ये क्या हो रहा है? इस रक्त बीज को जब भी मारती हूँ, 1000 रक्त बीज और पैदा हो जाते हैं। ऐसे युद्ध करना तो व्यर्थ है।

0: उस देवी का शिकार बनने से पहले भागो।
1: माँ दुर्गा ने तो काली का रूप लिया है,
2: अब कोई नहीं हरा सकता हमें। काली माँ की शक्ति से हम ये युद्ध आसानी से जीतेंगे।
3: देवी, तुम काली का रूप लेके भले इस पूरे ब्रह्मांड को डरा सकती हो, लेकिन मुझे नहीं।
4: तुमने अपने वरदान का दुरुपयोग किया है, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है रक्तबीज।

0: मुझको मारकर उसका रक्त पी रही है। बोलो काली माता की
1: जय,
0: बोलो माँ काली की
1: जय।
2: काली माँ तो रुक ही नहीं रही हैं।
3: ईश्वर काली माँ को रोकिए, उनका तांडव पूरे संसार का विनाश कर सकता है।
4: केवल इसी नृत्य से देवी काली शांत हो सकती हैं। उन्हें नृत्य करने दीजिए।
3: किंतु महादेव, माँ काली कई दिनों से नृत्य कर रही है, अब तक तो युद्ध का क्षेत्र उनके नृत्य से चूर हो गया है।
4: ब्रह्मदेव, आप ठीक तो हैं?
3: उन्हें शीघ्र ही शांत करना होगा महादेव।
4: देवी काली अपना वश खो बैठी हैं। मैं स्वयं जाऊंगा उन्हें रोकने।

0: काली, शांत हो जाइए। देवी, ये नृत्य रोको, नहीं तो ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। देवी, अर्धांगिनी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
1: ये कौन है मेरे पैरों के नीचे? ये तो मेरे महादेव है। महादेव, महादेव, क्षमा करें मुझे महादेव, आप ठीक है ना?
2: हाँ देवी, मैं ठीक हूँ। आप शांत हो गई?
1: क्षमा करें महादेव, मैं अपनी शक्ति पे नियंत्रण नहीं कर पाई। आपको भी नहीं पहचाना।
2: देवी, अपनी शक्ति का उपयोग करना अच्छी बात है, किंतु उस शक्ति में अपना वश खो देने से अपनों को केवल कष्ट ही मिलता है।
1: क्षमा करें मुझे महादेव, क्षमा करें महादेव।
3: Excuse me, I think I need to take this call. Hello? Who's this? What? मैं अभी आ रहा हूँ। Damn it!
4: सब ठीक तो है ना?
3: नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम सच कह रहे थे, ये कहानी भी सही थी। मैं सच में, मैंने too much कर दिया यार। मेरे पापा मुझे एक हफ्ते से कह रहे थे कि उनसे आकर मिल लूं। He misses me. बट मैं अपने काम में इतना खोया हुआ था कि मैंने हमेशा सोचा ही दैट ही कैन वेट। अभी कॉल आया तो पता चला दैट ही इज नो मोर।
4: आई एम सो सॉरी अपूर्व, संभालिए अपने आप को प्लीज।
3: आई एम सॉरी पापा।
4: आप
3: यू नो, मैं समझ गया जो तुम मुझे पहले कुछ देर से समझाने की कोशिश कर रहे हो। पापा भी हमेशा यही कहते थे। एनीवे, मैं अब पापा को तो वापस नहीं ला सकता, पर खुद को जरूर बदल सकता हूं। थैंक यू सो मच नील, तुमसे पहली बार मिला हूं और वो भी ऐसे। लेकिन तुमसे मिलकर आज ऐसा लगा जैसे आज ये समझना बहुत जरूरी था।
4: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चलिए, आपके घर पर आपका सब इंतजार कर रहे होंगे।
3: हाँ, तुम भी चलोगे? इफ यू डोंट माइंड।
4: मैं जरूर आता, लेकिन मुझे अमरनाथ पहुंचना है। उम्मीद करता हूं आपसे जल्द फिर से मुलाकात होगी। हर हर महादेव।
3: हर हर महादेव।
5: भ्रूण अति किसी भी चीज की अंत होती है। कोई भी काम करने का, दिल लगाकर करने का, ये बराबर है। लेकिन दिल, जान, जिगर, लीवर सब कुछ लगा के करेगा तो प्रॉब्लम। मैं वर्कोहॉलिक हूं, ये बोलने में कुछ अलग ही किस्म का प्राउड फील करते लोग। कोई घमंड आ जाता है कि भाई मैं वर्कोहॉलिक हूं, और काम के नशे में अपने यार, प्यार, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार सबको पीछे छोड़ जाते हैं। बिड़ू कभी कभी इतना पीछे छोड़ जाते हैं कि जब पलट कर दिखता है तो कुछ नहीं, कोई नहीं दिखता है, सिर्फ अकेलापन, डिप्रेशन, और सब कुछ होते हुए भी कुछ भी ना होने का एहसास। तो बिड़ू लगन से काम करने का, पागलपन से नहीं। शिव लगन सिखाते हैं, शिव अति से होने वाले अंत से भी बचाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
6: आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
10: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
13: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
14: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
13: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
14: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
13: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
14: जानकारी है तो कॉल करें 62052 1112 पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 99393-65923।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388 या 9198।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। विद्यार्थी सहयोग शिविर का हुआ आयोजन, अनीमिया मुक्त बिहार अभियान की हुई शुरुआत, जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक, अभिलेखों के संधारण में कारगर है ई निबंधन व्यवस्था, प्रधानाध्यापक को किया गया निलंबित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज थावे के महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक, छात्रावास एवं अन्य समस्याओं को सीधे सुनना तथा उसके समाधान की दिशा में त्वरित एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना था। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित शिविर के दौरान सामान्य शाखा प्रभारी अजय कुमार ने छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने छात्राओं से उनकी पढ़ाई, प्रशिक्षण, छात्रावास, संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं तथा दैनिक स्तर पर आने समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। छात्राओं ने भी अपनी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुझावों को खुलकर उनके समक्ष रखा। इस दौरान बताए गए समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और संबंधित मामलों के समयबद्ध निष्पादन की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए गए। सामान्य शाखा प्रभारी अजय कुमार ने छात्राओं को आश्वस्त किया कि विद्यार्थियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। छात्राओं ने भी अपनी समस्याओं को बिना संकोच संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखने तथा विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का उपयोग करने के लिए छात्राओं को प्रेरित भी किया गया। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने आज अनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अनीमिया मुक्त बिहार अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही गोपालगंज जिले में भी सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत 6 माह से लेकर 19 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं के हेमोग्लोबिन स्तर की जाँच की गयी। इसके अतिरिक्त गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की हेमोग्लोबिन की भी जाँच हुई। यह अभियान 25 अगस्त से प्रारंभ होकर 30 नवंबर तक संचालित किया जाएगा। जांच के दौरान जिन बच्चों, किशोर किशोरियों और महिलाओं में हेमोग्लोबिन का स्तर निर्धारित मानक से कम पाया जाएगा, उन्हें आवश्यकता अनुसार आयरन सिरप तथा IFA की गुलाबी, नीली एवं लाल गोलियां उपलब्ध कराई जाएंगी। अभियान के माध्यम से अनीमिया की पहचान कर समय पर उपचार एवं दवा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अनीमिया को लेकर बताया गया कि प्रभावित बच्चों, युवाओं और महिलाओं में निचले पलक के अंदरूनी हिस्से में लालिमा की कमी देखी जाती है। त्वचा एवं हथेली का पीलापन या लालिमा में कमी, नाखूनों में बदलाव, जीभ में सूजन, जल्दी थकान, सांस फूलना, पढ़ाई एवं खेलकूद में मन नहीं लगना, सुस्ती एवं अधिक नींद आना तथा बार बार बीमार पड़ना या भूख नहीं लगना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे लक्षण जिन लोगों में दिखे उनकी तत्काल जांच कराई जाए। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसका जांच और इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। आगामी पर्व त्योहारों एवं महावीरी अखाड़ा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील जनता से की गई। इसको लेकर शांति समिति की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सर्व धर्म संभाव एवं आपसी भाईचारे के साथ पर्व त्योहार मनाने का आह्वान किया गया। साथ ही अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर जिला प्रशासन कड़ी निगरानी रखेगा। दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में महावीरी अखाड़ा जुलूस के लिए पूर्व से लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया गया। लाइसेंस धारक पूर्णतः जवाबदेह भी होंगे। जुलूस में डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति दी गई है। हथियारों के प्रदर्शन, अश्लील संगीत एवं नृत्य पर भी पूर्ण रूप से रोक लगाया गया है। शांति समिति की बैठक में जिलाधिकारी समीर सौरभ ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक निर्देश दिया और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का भी निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा, आपसी प्रेम, सौहार्द एवं सामुदायिक सहयोग की मिसाल गोपालगंज ने कई बार पेश की है। इसे बनाए रखना प्रशासन के साथ साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भी सामूहिक जिम्मेदारी है। महावीरी अखाड़ा उठाने वाले लाइसेंस धारियों को कहा गया है कि आप अपने स्तर से भी पर्याप्त संख्या में वॉलेंटियर्स को जुलूस और झंडा के दौरान तैनात रखें। सभी वॉलेंटियर्स के पास पहचान पत्र होना आवश्यक है। जुलूस के दौरान वॉलेंटियर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और वे प्रशासन एवं पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। बैठक में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त की कि अखाड़ा आयोजन समितियां अनिवार्य रूप से पूर्व में लाइसेंस प्राप्त करेंगी तथा जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर लाइसेंस धारक की पूरी जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ई निबंधन व्यवस्था की सफलता के लिए नागरिक, सेवा प्रदाता, निबंधन विभाग के पदाधिकारी और कर्मी, अधिवक्ता, कातिब, मुद्रांक विक्रेता और सभी अन्य संबंधित पक्षों का समन्वित सहयोग आवश्यक है। उन्होंने सेवा प्रदाताओं से अपील किया है कि वे नई व्यवस्था के तकनीक प्रक्रिया को पूरी तरह से समझें और इसमें सहयोग करें। आम जनता और कातिब संघ के प्रतिनिधियों से भी अपील की गई कि वे बिहार सरकार की इस नई तकनीक आधारित ई निबंधन व्यवस्था को अपनाने में अपना अपेक्षित सहयोग करें। उन्होंने कहा कि ई निबंधन की प्रक्रिया से अभिलेखों के संधारण में काफी सुविधा मिल रही है और इससे लोगों को आने वाले समय में काफी लाभ भी मिलेगा। बिहार सरकार की नागरिक केंद्रित सेवाओं एवं डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जिलाधिकारी के द्वारा समीक्षा बैठक की गई, जिसमें ई निबंधन व्यवस्था का शुभारंभ जो 17 अगस्त से हुआ है उसको लेकर अवर निबंधक काली आशीष के द्वारा ई निबंधन की पूरी प्रक्रिया, इसके लाभ और विभिन्न स्तरों पर अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में कातिब, दस्तावेज लेखक, मुद्रांक विक्रेता, प्रशिक्षु, दस्तावेज निबंधन से संबंधित अधिवक्ता तथा अन्य संबंधित प्रतिनिधियों को भी इस नई व्यवस्था के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। सभी स्टेक होल्डर्स से नई तकनीक आधारित व्यवस्था को समझते हुए नागरिकों को बेहतर एवं सुगम सेवा उपलब्ध कराने में सक्रिय सहयोग की अपील की गई। भोरे के प्राथमिक विद्यालय बनकटा खास के प्रधानाध्यापक ब्रजेश राम को तत्काल प्रभाव से विभाग ने निलंबित कर दिया। डीएम न्यायालय में दिलशाना खातून बनाम बिहार सरकार मामले में आदेश के अनुपालन में कार्रवाई, वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना, विभागीय नियमों के विपरीत आचरण, लापरवाही और भ्रामक प्रतिवेदन देने सहित कई गंभीर आरोप लगे। निलंबन अवधि में इनको माझा प्रखंड संसाधन केंद्र में तैनात किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि अब इनके निलंबन के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कटिया थाना की पुलिस ने चोरी के एक कांड में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी सुदामा यादव पिता स्वर्गीय बलिस्टर यादव उर्फ विनोद यादव, यह खड़ही थाना कटिया के निवासी हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरम, जिसे सामान्यतः कैरेट बीड, गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है, कृषि जैव विविधता, पशुधन एवं मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करने वाला यह एक अत्यंत हानिकारक आक्रामक खरपतवार है। देश में लगभग 3.5 हेक्टेयर भूमि पर इसका फैलाव हो चुका है और इसका प्रसार लगातार चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। यह खरपतवार फसल उत्पादकता में कमी और पर्यावरणीय क्षरण के साथ साथ डर्मेटाइटिस, अस्थमा तथा नाक त्वचा एवं नाक श्वसनी संबंधित एलर्जी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का भी प्रमुख कारण है। इस आक्रामक खरपतवार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना के द्वारा अपने अनुसंधान केंद्र एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन और किसानों की आजीविका में सुधार विषय पर भी 2 दिवसीय क्षमता निर्माण आदान सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसका भी समापन हुआ। इसमें गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड के गजाधरपुर गांव के अनुसूचित जाति के 16 किसानों ने भाग लिया था। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक एवं लाभकारी तरीके से बकरी पालन की उन्नत तकनीकों से अवगत कराना था। सहयोग से 16 से 22 अगस्त तक 21वां पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह के दौरान किसानों तथा आम जनता को पार्थेनियम के दुष्प्रभावों और इसके प्रभावी प्रबंधन के उपायों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता एवं प्रसार गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी दी गई और वैज्ञानिकों, प्रशासनिक एवं तकनीकी कर्मचारियों, किसानों, विद्यार्थियों तथा खेतिहर श्रमिकों तक पार्थेनियम प्रबंधन संबंधित जानकारी पहुँचाई जा रही है। भोरे थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बनिया छापर में कार्रवाई करते हुए एक करकट नुमा मकान से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से स्मैक जैसा मादक पदार्थ मिला है। पकड़े गए आरोपी सुजीत कुमार और करण कुमार, ये दोनों बनिया छापर थाना भोरे के निवासी हैं। पुलिस ने इनके स्मैक जैसे मादक पदार्थों को जब्त करते हुए आवश्यक जाँच शुरू कर दी है और दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सासामूसा बाजार के पास एटीएम कार्ड छीनकर एक व्यक्ति से नगद राशि निकालने के प्रयास में 112 की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि घटना स्थल पर पीड़ित मुकेश कुमार गुप्ता के बयान पर यह कार्रवाई की गई। ये चतुर बगहा थाना जादोपुर के निवासी है। इन्होंने बताया कि एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसा निकालने के लिए गए थे, इसी दौरान एक व्यक्ति उनके हाथ से एटीएम कार्ड छीन लिया और उक्त कार्ड से नगद राशि निकालने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान मुसद्दिक अंसारी, पिता मैनुद्दीन अंसारी, साकिन धीतराला मोहल्ला मकान संख्या 330 विजयवाड़ा नई दिल्ली बताया जा रहा है। पुलिस अब इसे गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अभियुक्त की तलाशी लेने के बाद उसके पास से एक मोबाइल फोन और विभिन्न बैंकों के 3 एटीएम कार्ड, एक ब्लूटूथ डिवाइस और नगद राशि 19,593 रुपया बरामद किया गया है। अब पुलिस इस पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। कल एनआईए की जो छापेमारी हुई थी उसके संदर्भ में कल देर शाम प्रशासन ने जानकारी दी। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के थावे रोड स्थित तुरकहा गांव में मोहम्मद कैफ नाम के एक व्यक्ति के घर एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी। इसमें 6 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और मोहम्मद कैफ को अहमदाबाद में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसकी नोटिस उसके घर चिपकाया गया। एनआईए के आने से पहले ही घर के सारे लोग फरार थे, घर पूरा सुनसान पड़ा था। एनआईए की टीम ने छापेमारी कर आवश्यक जांच पड़ताल की है। फिलहाल इस मामले में और कोई खास जानकारी नहीं दी गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किस मामले में यह छापेमारी हुई है इसको लेकर एनआईए की तरफ से स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया है। थावे थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी बीरेंद्र मांझी पिता नंदजी मांझी और दूसरा उपेंद्र मांझी पिता छेदी मांझी, ये दोनों उदंत राय के बंगरा थाना थावे के रहने वाले हैं। दोनों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। पुलिस अभी ने गिरफ्तार कर इन पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 13 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है। पुलिस प्रशासन और विधि व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इन 13 पुलिस पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विद्यार्थी सहयोग शिविर का हुआ आयोजन, अनीमिया मुक्त बिहार अभियान की हुई शुरुआत, जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक, अभिलेखों के संधारण में कारगर है ई निबंधन व्यवस्था, प्रधानाध्यापक को किया गया निलंबित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
13: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
13: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा, मिला ही नहीं
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।

0: के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने संतोष फर्नीचर के नीचे कॉलेज रोड गोपालगंज।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: जान, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289225767 या 9779714864।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स।

0: और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।

0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।

0: लेना।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 87894 18744।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह
1: पिछले बार लगभग 52-53 लाख लोगों को रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरी देने का काम सरकार ने किया। इस बार हमारा टारगेट है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में 1 करोड़ लोगों को सीधा सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार की है।
2: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मिथिला हस्तकला कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन की घोषणा की। उन्होंने सोसाइटी के नवनियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों को पंजीकरण प्रमाण पत्र भी सौंपा। पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी और शिवम पासवान को सह अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा रानी झा को सोसाइटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रदेश की बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए आज 3 नई पहल शुरू की जाएंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: रक्षाबंधन से पहले आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य की नारी शक्ति को कई सौगात देंगे। श्री चौधरी पुलिस दीदी योजना के तहत 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण और फ्लैग ऑफ करेंगे। इसका उद्देश्य स्कूल कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बालिका PhD फेलोशिप की शुरुआत होगी। इसके तहत लगभग 1,000 छात्राओं को 4 वर्षों तक हर महीने 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी। इसके अलावा बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत बेटियों को 50,000 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
2: राज्य सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का विस्तार किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के सचिव विनोद सिंह कुंजियाल ने बताया कि अब सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। UPSC की निर्धारित परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को 75,000 रूपये, CDS, NDA और राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षाओं में 50,000 तथा RBI, ग्रेड बी, SBI, CGL और निर्धारित रेलवे भर्ती परीक्षाओं में 30,000 रूपये दिए जाएंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 28 अगस्त की रात 10 बजे तक निगम की सभी श्रेणियों की लगभग 1,075 बसों में महिलाएं बिना टिकट यात्रा कर सकेंगी। इनमें AC, नॉन AC, डिलक्स, PME बस और PPP मोड पर संचालित बसें शामिल हैं। महिलाएं ऑफिस, कोचिंग, बाजार के अलावा अंतर जिला और अंतर्राज्यीय मार्गों पर भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगी। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य सरकार के 100 दिनों के कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि रेडियो, टीवी, समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए। मंत्री ने नकारात्मक खबरों और अफवाहों का त्वरित आधिकारिक खंडन करने पर भी जोर दिया। उन्होंने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित और गुणवत्तापूर्ण प्रचार की समीक्षा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में किसानों को फसल सुरक्षा के लिए 75% अनुदान पर कीट नियंत्रण उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इसके लिए पौधा संरक्षण उपादान वितरण योजना को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत किसानों को फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी स्ट्रैप और फ्रूट फ्लाई ट्रैप अनुदानित दर पर मिलेंगे। प्रदेश की सभी पंचायतों में अगले 3 वर्षों में मुक्तिधाम यानी शवदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मुक्तिधाम का निर्माण ग्राम पंचायतों की सरकारी जमीन पर ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत होगा। प्रदेश में कटे होंठ और तालू से प्रभावित बच्चों को अब मुफ्त इलाज मिलेगा। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति और स्माइल ट्रेन इंडिया के बीच 5 वर्ष के लिए समझौता हुआ है। इसके तहत प्रभावित बच्चों की पहचान कर उन्हें स्माइल ट्रेन के सहयोगी अस्पतालों में निःशुल्क सर्जरी और उपचार की सुविधा मिलेगी। एम्स पटना ने एडवांस्ड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के क्षेत्र में नया लिम्का रिकॉर्ड बनाया है। न्यूरो सर्जरी विभाग ने 8 सेंटीमीटर लंबी हर्निएटेड डिस्क को केवल 1.5 से 2 सेंटीमीटर के छोटे चीरे से सफलतापूर्वक बाहर निकाला। यह सर्जरी न्यूरो सर्जरी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर सरज कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। इस उपलब्धि के साथ एम्स पटना का नाम 5 से अधिक बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। पटना, भोजपुर, वैशाली, बक्सर, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और बेगूसराय समेत कई जिलों में निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। भागलपुर और वैशाली जिले बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। हमारे भागलपुर संवाददाता ने बताया कि नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण तटबंधों पर लगातार दबाव पड़ रहा है।
1: भागलपुर के खरीक अंचल में काजी कोरैया राघोपुर तटबंध का 20 मीटर हिस्सा और कट जाने से राघोपुर पंचायत में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। गंगा के बैकवाटर के लगातार बहाव से तटबंध के नीचे की मिट्टी भी खिसक रही है। इससे राघोपुर पंचायत के 5 वार्डों में बाढ़ का पानी फैल गया है। प्रभावित क्षेत्र से लोग सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे हैं। कटाव को रोकने के लिए प्रशासन ने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है। बांस और तार के फ्रेम में जियो बैग भरकर कटाव वाले हिस्से को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
0: इधर हमारे वैशाली संवाददाता ने बताया कि राघोपुर प्रखंड के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है और पूरा क्षेत्र टापू में तब्दील हो गया है।
2: वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। चक सिंगार, वीरपुर, जुरावनपुर, करारी, जुरावनपुर, बरारी, सरायपुर, जहांगीरपुर, कर्मोपुर और तेरसिया पंचायतों में पानी भर गया है। कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। शिवनगर, बिंदा मार्केट और जुरावनपुर मार्केट में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जुरावनपुर थाना परिसर में पानी घुसने से कामकाज प्रभावित हुआ है। बाजारों में पानी भर जाने के कारण लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह।
0: पटना जिले के मोकामा, मनेर और दानापुर दियारा इलाकों में भी बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कल पटना से सटे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति तक राहत और जरूरी सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने आज बक्सर, गोपालगंज, सिवान और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात का भी अलर्ट है।
3: दिनांक 26 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। बक्सर, गोपालगंज, सिवान एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से बांका जिले के फुल्ली टूमर प्रखंड के बनरकोला गांव में एक युवती की मौत हो गई। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिवस ईद मिलादुन्नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरत का आयोजन किया गया है। मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। भारी बारिश के बीच सहरसा मधेपुरा सर्किट 2 ट्रांसमिशन लाइन में आई खराबी को ठीक कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। खराबी से मुरलीगंज, उदा किशनगंज और कुमारखंड में लगभग 55 मेगावाट का लोड प्रभावित हुआ था। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कटैया निर्मली चौक पर देर रात हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि सड़क किनारे भजन कीर्तन कर रहे लोगों के तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से ये हादसा हुआ। पटना में साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर साइबर ठगी करने वाले एक नाबालिग और एक युवती समेत 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के अरुणोदय कॉलोनी में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। सारण जिले के सहाजितपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक आभूषण दुकानदार से लगभग 4 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पानी की बौछार, लाठियां भी भांजी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ओबीसी क्रिमिलेयर से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट विशेष पीठ का करेगा गठन। प्रभात खबर लिखता है, 1200 करोड़ से समरेगा गया बोधगया कॉरिडोर, सोन नदी से जोड़ी जाएगी फल्गु। दैनिक भास्कर ने लिखा है, अब निजी कंपनियां भी बना सकेंगी देसी घातक मिसाइलें, रक्षा तकनीक ट्रांसफर करेगा DRDO। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, वायु प्रदूषण नियंत्रण में पटना नगर निगम का राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन। आज अखबार की सुर्खी है, शिक्षकों की तमाम प्रतिनियुक्ति रद्द। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वर्ष 2030 तक राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की घोषणा की। मुख्यमंत्री आज बिहार की नारी शक्ति को देंगे कई सौगात, पुलिस दीदी के लिए 4700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का करेंगे लोकार्पण। गंगा नदी में उफान से भागलपुर, वैशाली और पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद ए मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: Now pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
8: Pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
10: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो
11: हेलो। नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
12: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: जी नमस्ते मैम।
12: नमस्ते,
13: कैसे हैं?
12: जी मैं बढ़िया हूँ, आपने बताइए आप कैसी हैं?
13: मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता पानी हो गया?
12: हो गया। और आपका?
13: मेरा भी हो गया है। आप भारती जी बोल रहे हैं?
12: नहीं
13: जी,
12: जी मैं भारती नहीं हूँ।
13: अच्छा, और मनोरमा मैम नहीं आई है?
12: जी जी मैं बात कर रही हूँ आपसे।
13: मनोरमा या भारती,
12: क्या लगता है आपको?
13: पता नहीं, आप दोनों का आवाज एक ही जैसा है।
12: अच्छा जी, अच्छा नाम बता दीजिए अपना।
13: शिल्पी विधवा से।
12: तो क्या
13: जी
12: क्या हो रहा था अभी?
13: अभी तो सिलाई कर रहे हैं। सोनी मैम नहीं आए हैं?
12: नहीं।
13: अब नहीं आएंगे क्या?
12: अब तो मुझे नहीं पता।
13: अच्छा, मुझे गाना सुनना था,
12: बता दीजिए।
13: कौन सिंह की आवाज में कोई सॉन्ग सुना दीजिए।
12: कोई भी?
13: हाँ, न्यू नहीं लेकिन पुराना वाला।
12: जब आप इतना मुश्किल से कॉल किए तो आप ही बता दीजिए कौन सा।
13: कोई भी ओल्ड सॉन्ग बता दीजिए कौन सिंह का।
12: ओके, और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहती हैं?
13: जी आपको, मनोरमा जी को। आप तो बता ही नहीं सर आप है कौन, मनोरमा या भारती।
12: तो वही तो मैं बोली कि क्या लगता है आपको?
13: मतलब पूरा 100% सुना है लेकिन लग रहा है कि आप भारती जी हैं।
12: अच्छा
13: बताइए कौन है?
12: चलिए जो समझ लीजिए।
13: अच्छा चलिए, आप दोनों को हो रहेगा और रेडियो सभी दोस्तों को।
12: ओके, तो फिर यही करते हैं गाना आपका।
13: जी थैंक यू।
12: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: अभी आपके रिचार्ज ना है, आप रिचार्ज ना बता रहे, बोला कौन कौन है।
0: जी जी तो अभी सर से दिलवाया ना भूल के।
1: जी जी रक्षाबंधन इसका भी अनु रक्षाबंधन वाला गाना अनु दुबिया के बाद में। जी जी जी अमन है, रशीद है, पवन है, राहुल है, आदित्य, अनुराग है। जी आपका आवाज कट कट के आ रहा है,
0: नेटवर्क प्रॉब्लम है।
1: जी जी
0: अब आवाज आ रही है।
1: जी जी आवाज आ रहा है।
0: जी तो बोल रहे हैं कि आप ये रेडियो रिंगजिंग को कैसे सुनते हैं?
1: सुनते हैं रेडियो
0: रिंगजिंग,
1: हेलो फरमाइश से ये सुनते हैं, एसएमएस है। रात तो बातें तो नाइट सुनते हैं, रात के तो नींद लाग देते हैं सबके। इधर तो बहुत धूप है, एकदम काफी धूप
0: है। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: सुंदरपुर सुंदरी सिवान जिला का।
0: अच्छा अच्छा, चलिए तो मैं पूछ रही थी कि आप मतलब रेडियो रिंगिंग को कैसे सुनते हैं, रेडियो के माध्यम से या फिर मोबाइल?
1: रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, मोबाइल से नहीं, रेडियो।
0: अच्छा, मतलब कब से सुनते आ गए आप?
1: सुनते आ गए हम लोग 2007 से की आज से।
0: अच्छा
1: जी, शुरू शुरू में हुआ था तब से।
0: अच्छा
1: अच्छा, बाद से रेडियो आया था बाद में।
0: जी
1: बाद रेडियो आया था सिवान में, आगे रिंझी में आया था अपना गोपालगंज में, तब आया था दो स्टाफ से सुनते हैं। उसी से कॉल से बाद से कॉल लगाए थे नंबर।
0: बढ़िया, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: अमन है, अशीष है, पवन है, राहुल है, अजीत है, अनुराग है, कुली है।
0: ओके तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी जी जी जी नमस्ते
0: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंझी 90.4।
1: जी जी जी

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करे 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
7: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
8: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
7: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: Now pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
10: Pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
12: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello.
13: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
14: जी मैडम, मैं सुनील मधुसूदन गढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
15: आपकी आवाज कट के आ रही है, एक बार और बता दीजिए।
14: सुनील साहू मधुसूदन गढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश।
15: अच्छा,
14: कौन बोल रहे हैं? मनोरमा मैम बोल रही क्या?
15: जी जी
14: मैडम जी, नमस्कार।
15: नमस्कार।
14: और आज मेरी पिक्चर है गरीबी अमीरी।
15: ओके।
14: और गाने के बोले भूल भुलैया सैया रास्ता भूल गई मैं घर जाऊं कैसे।
15: आप दो लाइन गा के बता सकते हैं?
14: जी जी, ये है ना, भूल भुलैया सैया अखियां तेरी रास्ता भूल गई मैं घर जाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे।
15: ओके। और ये गाना आप डेडिकेट करना चाहते हैं?
14: जी मैडम जी, आपको है, भाटी मैम को है, सोनी मैम को है, गजराज सिंह लोधी है, जितेंद्र राठौड़ है, गोपाल ओझाजी है, ककवासा से। सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट रहेगा। और ये कब प्ले होगा?
15: ये गाना आपका आज ही प्ले होगा।
14: ठीक है मैडम, भी धन्यवाद
15: जी। तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका?
14: ठीक है
15: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।
14: धन्यवाद।

0: वालेकुम अस्सलाम।
1: कैसे हैं?
0: जी बढ़िया है, अपना बताइए, आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ।
0: आपकी आवाज कट के आ रही है।
1: आ रही है आवाज?
0: जी जी।
1: खुशी मेरा नाम है।
0: जी
1: खुशी।
0: खुशी तो फिर कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ। खाना ना हो गया?
0: और आपका? जी
1: अभी खाना बन रहा है मेरे घर।
0: तो नाश्ता हुआ है ना?
1: हाँ नाश्ता कर रहे हैं।
0: चलिए बढ़िया।
1: गाना बजा दीजिएगा।
0: बता दीजिए।
1: डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है।
0: क्या आप दो लाइन गा के सुना सकते हैं?
1: डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है।
0: अरे ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहती हैं?
1: आपको आज जितने रेडियो सुनते हैं और मेरी बहन को।
0: वैसे क्या करती हैं आप?
1: पढ़ने जाती हूँ।
0: किस क्लास की पढ़ाई करती हैं?
1: 9th।
0: अच्छा चलिए बढ़िया। कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी?
1: अच्छी चल रही है, छुट्टी है।
0: जी जी। तो और सब बढ़िया है ना आपके घर में?
1: तो कुछ ठीक है।
0: जी
1: वो संडे को जो फोन लगा था ना सवाल के लिए,
0: जी
1: उसमें मैं कर सकती हूँ?
0: जी बिल्कुल।
1: हमको लगा बस 10th क्लास को ही करेंगे सर।
0: जी तो आप भी कर सकती हैं, संडे को होता है हेलो क्यूज कॉन्टेक्ट।
1: हाँ
0: जी। तो आप एक बार भी उसमें नहीं जुड़ी हैं अभी?
1: नहीं।
0: चलिए कोई ना, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा।
1: हाँ।
0: ओके तो फिर प्ले करेंगे गाना आपका। जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो

0: विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 आमजेड पर।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: Now pick your phone up. Hello. जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
7: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 एफएम में।
9: नमस्कार, मैं मधुसूदन से राजू मार्ग में है।
8: जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
9: ठीक है, मैं सुन रहा है।
8: बता दीजिए ना।
9: गीता था जिसके लिए तो कैसी लड़की है जिसे।
8: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
9: सभी श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं।
8: ओके, वैसे आप रेडियो रिंजन को कैसे सुनते हैं? रेडियो रिंजन को आप कैसे सुनते हैं, रेडियो के माध्यम या फिर फोन से?
9: रेडियो रेंजन किसी से भी सुन लेते हैं, मोबाइल से चाहे रेडियो
8: से। ये बढ़िया, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
9: ठीक है,
8: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजन 90.4 FM।

0: नमस्ते,
1: मैं रोशनी बोल रही हूँ।
0: कहाँ से बोल रही है रोशनी जी?
1: पठानपट्टी से।
0: अच्छा,
1: आपने सुना ये?
0: जी मेरा भी बढ़िया है। वैसे क्या हो रहा था?
1: मैच तो पहले हो गया।
0: जी जी हो गया। और आपका?
1: मेरा भी हो गया।
0: चलिए बढ़िया है। वैसे रोशनी जी आप क्या करते हैं?
1: पढ़ते हैं।
0: किस क्लास की पढ़ाई करती हैं?
1: सेवन।
0: चलिए बढ़िया।
1: गाना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: खेसारी लाल का देवता पितृ वाला।
0: कौन सा?
1: खेसारी लाल का।
0: तो कौन सा गाना के नाम?
1: देवता पिता, मैं याद नहीं है।
0: तो फिर आप गाना बताएंगे दो लाइन गा के तो कभी ना प्ले होगा? या फिर आप गाना चेंज भी कर सकती हैं?
1: अपने मन से बता दीजिए।
0: नहीं, आप इतना मेहनत से कॉल किए हैं, गाना तो बहुत सारा, बता दीजिए आपको कौन सा सुनना है।
1: खेसारी लाल का कोई भी गाना बजा दीजिए।
0: जैसे कि आपको कैसा सॉन्ग सुनना है? जैसे कि खेसारी लाल का गाना आप सैड सॉन्ग सुनना चाहते हैं या फिर कोई रोमांटिक?
1: जी।
0: तो कौन सा दोनों में से?
1: सैड।
0: सैड सॉन्ग। ओके। और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
1: आपको पहले जो सुन रहे हैं उनको।
0: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: थैंक यू।
0: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
9: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
14: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
15: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
16: नमस्कार मैम।
17: नमस्कार,
16: मैं सुरेश बोल रहा हूँ।
17: जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
16: गोरीजुमो जिला, देवघर, झारखंड से मैम।
17: ओके, तो फिर कैसे हैं आप?
16: बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं मैम?
17: जी मैं भी अच्छी हूँ।
16: जी जी, आज गाना सुना दीजिए मैम, आन मिलो सजना फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में।
17: जी, और गाने के बोल?
16: गाने के बोल है, फलक से सितारे तोड़ के लोग लाए हैं, इस तरह के गीत के बोल है।
17: क्या आप दुल्हन गा के बता सकते हैं?
16: गाना मैम हमको इतना छाता नहीं है, बोल मैं बता दिया।
17: जी जी, मतलब कोई बात नहीं, आप दो लाइन बता दीजिए।
16: फलक से सितारे तोड़ के लोग लाए हैं, इस तरह के गीत के बोल हैं।
17: जी जी, वैसे तो अच्छा तो गाते हैं आप।
16: अच्छा नहीं है मैम, बेसुरा आवाज है मेरा।
17: नहीं ऐसा थोड़ी, हम लोग सुनते हैं तो बोलते हैं
16: ये। अगले बार कोशिश करूंगा मैं गा के सुनाने का।
17: जी जी बिल्कुल
16: जी,
17: सबका आवाज तो पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं।
16: थोड़ा जल्दबाजी में है, टाइम लास्ट हो रहा है तो इसीलिए पूरा गाना सुना नहीं पाए। तो
17: कोई बात नहीं है।
16: जी जी,
17: और ये गाना डेडिकेट भी है
16: जी। सबसे पहले मैं आपको और रेडियो रेमिगेज जितने लिखने सबों को, और उसमें कुछ हमारे साथी सब हैं, मदन को लें, प्रभु को लें, जुगल को लें, कमली को लें, राजकुमारी हैं, श्रीधर प्रसाद यादव हैं, विष्णु प्रसाद यादव हैं, रोहित कुमार सिंह हैं, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
17: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
16: जी जी मैम, गाना आज बजेगी मैम ने कल?
17: आज ही बजेगी।
16: जी जी
17: जी,
16: और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
17: जी, तो फिर सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
16: ओके मैम, थैंक यू,
17: वेलकम।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM
0: मैं मथुरा भूषण बोल रहा हूँ, गोपालगंज से, गोपालगंज जिला से।
1: जी जी और आपका नाम?
0: मेरा नाम हुआ शौकत अली।
1: अच्छा,
0: और बताइए।
1: जी सब बढ़िया है, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं मैडम। बहुत अच्छा लगा रहा था, गौर नहीं लग रहा था, बिजी बिजी आ रहा था।
1: जी जी बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं तो।
0: नहीं, हम पहले वाला लगाए हैं, ठीक है ना?
1: अच्छा जी, पहली बार।
0: हाँ, पहली बार लगाए हैं। सुनते था बहुत दिन से, मतलब बहुत दिन से सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं, फिर अभी मतलब मोबाइल में सुनते हैं, ठीक है ना? बहुत दिन सुनते हैं, लेकिन अभी सोचे लगाते हैं एक बार, तो नहीं लग रहा था, बहुत दिन लगा रहे थे।
1: जी जी चलिए अब लग
0: मैडम, गाना सुनना है?
1: बता दीजिए।
0: ओ भोजपुरी नहीं है ना, उसको मत सुनगा। लूट गई नहीं प्यार में, हेलो
1: जी।
0: ओ गाना गाना नहीं है, लूट गई नहीं प्यार में, वही वाला गाना सुनना है।
1: दुल्हन गा के बता सकते हैं आप?
0: नहीं मैडम, गाना तो नहीं गाते हैं। ओ लूट ओ नहीं है गाना है, वो ये अलग लिखिएगा ना, यही अला वो आ जाएगा गाना।
1: अच्छा एक बार और बता दीजिए।
0: लूट गई नहीं प्यार में।
1: अच्छा और हमारी रिक्वेस्ट भी है।
0: हाँ मैडम, जितना भी रेडियो इंजन सब सुनने वाले हैं सबका है, ठीक है
1: जी। वैसे तो आप रेडियो इंजन को कैसे सुनते हैं, मोबाइल ऐप से?
0: हाँ मोबाइल से अभी सुनते हैं, पहले रेडियो था, ठीक है ना, बहुत दिन से। हाँ रेडियो में सुनते थे, ठीक है ना, अभी मोबाइल में सुनते हैं।
1: मतलब गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं?
0: जी जी मैडम।
1: चलिए तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिंगजिम का कार्यक्रम?
0: मैडम अच्छा लगता है हमको, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत दिन से सुनते हैं, ठीक है ना।
1: अच्छा जी,
0: जहाँ रेडियो रिंगजिम है, जहाँ अपना ये है ना, इसका मतलब रिंगजिम का ये है, उधर हम गए थे एक बार इंटरव्यू मारने के लिए भी, उसके नीचे इंटरव्यू होता है ना बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए। हाँ उधर भी गए थे कितने बार, ऐसे तो गोपाल जाते जाते रहते हैं, ठीक है ना।
1: ठीक
0: है मैडम,
1: ठीक है, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है मैडम।
1: रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिम 90.4 FM में।
8: नमस्ते मैम।
7: नमस्ते,
8: कैसे हो?
7: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
8: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
7: जी अच्छी की बात है। वैसे आपका नाम?
8: मैं तुम्हारी सासू से बोल रही हूँ।
7: तो क्या हो रहा था वैसे?
8: अभी तो कॉल लगा रही थी, बैठी हूँ।
7: अच्छा, तो कॉल लग गया तो बता दीजिए फरमाइश अपनी।
8: शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ।
7: क्या आप 2 लाइन गा के सुना सकती हैं?
8: याद नहीं है।
7: 2 लाइन ही गाना है आपको?
8: याद नहीं है, अभी याद नहीं।
7: चलिए कोई बात नहीं है। और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
8: सबसे पहले आपको और जितने भी रेडियो सुनते हैं।
7: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
8: जी।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: मैडम जी, हम पूर्वी चंपारण बिहार से झूना चाची बोल रहे हैं, फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में।
0: अच्छा, क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया
0: जी। तो क्या हो रहा था अभी?
1: काम हो रहा है, पेंटिंग का काम कर रहे हैं।
0: बता दीजिए फरमाइश।
1: राखी बनवाला भैया सावन आयल भोजपुरी फिल्म के गाना।
0: क्या दो लाइन गा के बता सकते हैं?
1: हाँ, राखी बनवाला भैया सावन आयल भोजपुरी।
0: ओके, और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
1: बैकुंठ धाम से है अर्जुन अकेला जी, संजय शाह जी, और कीरपुर बागा से है माधो मोहतो जी, और दिनेश शाह जी, उमेश शाह जी, और मनीष चौधरी जी, अरुण चौधरी जी, और रेडियो रंजीन सुनने वाले सब श्रोता को सुना दीजिए। नमस्कार।
0: नमस्कार। तो प्ले करते हैं गाना आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीन 90.4 FM।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18744।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।
12: Now pick your phone up.
13: Hello?
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello?
12: Now pick your phone up.
13: Hello?
14: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
15: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है
16: आपका रीडिंग 90.4 FM में।
17: नमस्कार मैम, मैं सुबोध साहू बोल रहा हूँ बेगूसराय से।
16: नमस्कार, कैसे हैं आप?
17: जी
16: क्या हाल चाल है आपका?
17: जी ठीक है मैम, आपका क्या हाल चाल है?
16: जी मेरा भी बढ़िया है।
17: खाना पीना हो गया मैम जी?
16: हो गया। और आपका?
17: जी हो गया खाना होना।
16: चलिए बढ़िया।
17: तो मैम गाना सुनवा दीजिएगा वो राखी हर साल पहला सावन मामो, शत्रुघ्न सिन्हा का नहीं, बिहारी बाबू का?
16: जी जी
17: उसी फिल्म का है, यही गाना सुनवा दीजिएगा।
16: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
17: जी मैम, सबसे पहले आपको और पूरे रिमझिम परिवार को सुनवाना चाहता हूँ।
16: ओके तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
17: जी नमस्कार।
16: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: हम नूर आलम बोल रहे हैं श्रीनगर कश्मीर से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है ठीक है, अपना बताइए। ठीक है
0: जी, मेरा भी बढ़िया। तो क्या हो रहा था?
1: हम और इधर गाना सुनना है।
0: बता दीजिए।
1: गाने का बोल है, हुई आँख नम और दिल मुस्कुराया।
0: जी एक बार बता दीजिए।
1: हुई आँख नम और दिल मुस्कुराया,
0: ये
1: साथी फिल्म का गाना है।
0: अच्छा, क्या आप दुल्हन गा के बता सकते हैं?
1: हुई आँख नम और दिल मुस्कुराया, कोई साथी भूला याद आया।
0: ठीक है, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: जी हाँ, अजीजुद्दीन शहाबुद्दीन इमाम हसन इंसान अली
0: जी। तो ये आप रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं, मोबाइल से या फिर रेडियो के माध्यम?
1: हम तो मोबाइल से सुनते हैं ऑनलाइन।
0: अच्छा, मतलब गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं?
1: जी।
0: चलिए बढ़िया। वैसे आप ये मतलब कितना समय से सुनते आ गए हैं?
1: हम तो 3-4 महीना हो गया।
0: अच्छा, तो कैसे पता चला आपको ये रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम?
1: एक आदमी था उधर चंपारण का, वो बुला रहा था अपने रेडियो में।
0: अच्छा,
1: बोला ये तो हमारे यहाँ का रेडियो स्टेशन है, ऐसे मालूम है।
0: नहीं, कितना लोग रेडियो तुम्हारे सुनता है, मोबाइल से भी बहुत सारे ऑप्शन है।
1: तो इसको मैसेज के जरिए से भेजते हैं मैसेज?
0: जी, मैसेज वाला ये इसका अलग से नंबर है।
1: अच्छा
0: जी, इसको हमारे रेडियो
1: फंक्शन इस प्रोग्राम में जो फंक्शन दिखाता है इसी में, या जैसे मैसेज हम भेजते हैं
0: आप
1: मैसेज भेजते?
0: जी, आप व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं या फिर
1: व्हाट्सएप। तो मैं ये आपको सेव किया है नंबर, लेकिन वो व्हाट्सएप नहीं आपका शो करता है, इसमें इनवाइट लिखता है बस।
0: जी, 12 बजे जो शो चलता है Europe Voice Europe 12 का, उसमें नंबर बताया जाता है आपको।
1: जी,
0: उस पर नोट कर लीजिएगा, मैसेज डालिएगा ना आप, तो आपके पर मिल जाएगी। और आप
1: इनवाइट लिखा, मैंने नंबर वो दिया है, चेक किया है। तो
0: जी, तो वहाँ का हम तो दो नंबर है, जैसे कि एक कॉल के माध्यम से लगता है और एक व्हाट्सएप नंबर। तो आप कॉल के माध्यम से जो होता है वो चेक लेंगे, इसीलिए इन्वाइट लिखा होगा।
1: तो वैसे तो नंबर मैं इसमें कर सकता हूँ, मैं इसको किया है, लेकिन चेक करना पड़ेगा।
0: जो अभी 12 बजे जो शो चलता है ना, उसमें नंबर बताया जाता है, आप एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद से लग जाएगा और आप गाना उसी टाइम सुन सकते हैं। जी, तो फिर ये वाला गाना आपका प्ले करते हैं। जी, सुनते रहिए सबसे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: मैं बनूंगा।

0: आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर।
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजैट पर।
2: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
3: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
4: हम रामा जी प्रसाद बोल रहे हैं।
5: जी जी, क्या हाल चाल बा?
4: हाल चाल ठीक बा, रात बरखा भयो ने?
5: हाँ हाँ, बारिश तो खूब भयो रात के।
4: हाँ तो भयो गए, मेरा पूरा नखे भर दिन कमे भर पानी लागल रही के।
5: अच्छा,
4: गाना सुनाई राखी बंधन वाला।
5: बता दी,
4: चंदा ले जाके भैया से कहना बहना तेरे याद करे।
5: का ई दुलन गा के बता सकते नहीं?
4: अब शुरुआत है ये ना, चंदा ले जाके भैया से बहना तेरा याद करे।
5: अच्छा, अरे गाना सुनवाए के लिए क्योंकि
4: नीलम कुमारी बारी, विमल कुमारी बारी, नीतू कुमारी बारी, अनुराधा देवी बारी, यही सुना होगा।
5: अच्छा ठीक बा, वैसे कहा उतर लाभी
4: गाना सुन रही चल चला फरमाइश कर लेने ये गाना बजौने की रखिया बदलाव भैया सावन आई।
5: बहुत अच्छा गाना भाई, चली बढ़िया बात का फिर प्ले करते गाना।
4: नमस्ते
5: नमस्ते, सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम ना। नमस्कार जी, जी कैसे हैं आप?
1: जी मैं अच्छे हैं, आप अपना बताइए कैसे?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: और सब आगे लोग कैसे हैं?
0: जी जी यहाँ पे भी सब कुछ बढ़िया है।
1: मैम कल सोने मैम जोड़ी थे का?
0: नहीं
1: आज तुम सुनाई दिया ये
0: मारती भी नहीं
1: जी। तो मैम गाना सुनाते हुए
0: बता रही हूँ,
1: बोल राधा बोल।
0: ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
1: इतना स्वादिष्ट छोटा भाई बहन सोचना सुनना सुन रहा है, सभी सुना और आप भी सुनिएगा।
0: जी जी तब क्या हो रहा था?
1: बस फोन लगाते लगाते फोन भी दूस गया है।
0: जी जी
1: इतना छोटा पड़ गया ना कि कॉल जब भी लग ही नहीं था।
0: जी जी अभी एक कॉल करता है तब दूसरा आ जाता है।
1: जी जी जी और मैम सोनी मैं फाइनली चली गई था?
0: नहीं।
1: अच्छा और सब अच्छा है ना?
0: जी जी सब बढ़िया है।
1: तो गाना सुना दीजिए।
0: जी प्ले करते हैं गाना आपका।
1: थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम।
1: जी मैम चौथा कुमारी है ना?
0: जी
1: जी चौथा कुमारी, सभी श्रोताओं को धन्यवाद है।
0: जी जी आप
1: चौथे कुमारी के लिए जी मैम थैंक यू।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
11: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो, जी मैम नमस्कार।
13: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 एफएम में।
12: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं एमपी से। मैम आप कैसे हो मैम?
13: जी मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए।
12: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो में फोन लगाते हुए मैम, तो बहुत देर से तो ट्राई कर रहे थे, अभी तो समाप्ति होते होते तो अभी फोन लगा है मैम।
13: जी चलिए कोई बात नहीं, बता दीजिए फरमाइश अपनी।
12: जी गाना सुनवा दीजिएगा, गाने के बोला तेरे इसमें पागल हो गया दीवाना। और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
13: ओके वैसे क्या हो रहा था अभी?
12: तो कुछ नहीं मैम, फोन ट्राई कर रहे थे, फोन भी लग गए।
13: नहीं करते गाना आपका सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: हाँ जी, खबर पक्को है। वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
0: रिकॉर्डिंग होता है, गाना सुनवाते हैं नहीं? क्यों,
1: ऐसा थोड़ी है कि रिकॉर्डिंग होगा और गाना आपका?
0: हम सुनते रहते हैं, हरदम सुनते रहते हैं रेडियो। जब भी रिकॉर्डिंग ऐसे चलता है तब सुनते हैं।
1: अच्छा, तो कब कराए थे आप अपना रिकॉर्डिंग?
0: बुधवार को।
1: बुधवार को, और आपका गाना नहीं बजा?
0: आप, हाँ, आप ही तो किए थे
1: जी। आप नाम बता सकते हैं मेरा?
0: आप मनोरमा मैम बोल रहे हैं
1: जी। जी,
0: हम लोग आवाज एक बार में पहचान लेते हैं और कोई भी आरजे को
1: जी। तो
0: जबकि सोनी मैम को और भारती मैम को आवाज एक ही है, थोड़ा मोड़ा आपका आवाज भी उनसे मिलता जुलता है
1: जी। जी, तो मैंने तो जितना कॉल रिकॉर्ड किया था मैंने तो बजाया था।
0: नहीं, अब बजा हम सुन रहे थे एकदम, हम सोचते हैं कि अब आएगा अब आएगा।
1: अच्छा, तो फिर या फिर मुझसे ही गलती हुई होगी, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ आपसे।
0: चलिए, अब माफी तो ऊपर वाला देते हैं, हम लोग क्या देंगे।
1: मतलब आप इतना मेहनत से कॉल रिकॉर्ड करा है और मेरे से मिस्टेकिंग हुई होगी या फिर
0: खाना पीना हो गया है?
1: जी जी, हो गया। और आपका?
0: अब होगा, अभी तो मंदिर से आ रहे हैं।
1: अच्छा जी, इस टाइम?
0: हाँ जी
1: जी, बहुत लेट हो गया ना?
0: हाँ, भीड़ भाड़ है ना मंदिर पर, काफी भीड़ है। क्या,
1: कहाँ से बोल रहे हो?
0: हम श्यामपुर से बोल रहे हैं। वो वहाँ विजयपुर मंदिर है ना, हम विजयपुर के पास।
1: जी जी,
0: हाँ वही मंदिर पे
1: गए। पूजा पाठ हो गया?
0: पास ही में है हम लोग।
1: तो अच्छा से पूजा पाठ हो गया ना?
0: हाँ जी, बहुत अच्छा।
1: चलिए बढ़िया। तो आपकी फरमाइश बता दी?
0: फरमाइश तो वही फरमाइश चलेगा, मक्सी है।
1: कौन सा?
0: वही बजा दीजिए, ओम नमः शिवाय। अभी को आज चलेगा?
1: जी जी, आज चलेगा।
0: आज शाम को सुना दीजिएगा।
1: जी जी, अगर आज नहीं बजा तो समझिए कि कल बजेगा, क्योंकि बहुत सारे आ चुके हैं अपने लिए से, तो हो सकता है।
0: जी,
1: लेकिन पूरा कोशिश रहेगा कि ये गाना आपका आज ही चले। जी, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैम, थैंक यू।
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
1: श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009294911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: इस

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए, और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869973।
2: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 62052 62112 पे।
9: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: All right.

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
5: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042 पे।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कोलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।

हेलो, नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98।

9852 78 92। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो दोस्तों, बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग और गाने की बोल है एक पल का जीना। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रंजिम 90.4 FM।

अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग एक पल का जीना, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास काफी सारे मैसेज पहुंच चुके हैं जो कि प्रमुख जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून प्यारे उदू घोषक महोदय 90.4 FM की पूरी टीम को, कैसी हैं आप? और हम तो झकास हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं जी नमस्ते गुड आफ्टरनून मैम, वाह सुपर सॉन्ग, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो हाय नमस्ते भारती दी, मैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार भारती मैडम जी, हम भी शो से जुड़ गए हैं और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते दी, कैसी हैं? ठीक हैं, सभी दोस्त कैसे हैं? ठीक हैं, सुपर गाना बा दी सविता चौहान भूज छापरा से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि हेलो मैम, सोनी गोपालगंज से और मुझे भी गाना सुनना है, सॉन्ग का बोल है चेहरा तेरा जब जब देखूं प्यार आए तुम पे। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है सोनी जी की तरफ से, जो कि गोपालगंज की रहने वाली हैं, तो चलिए इनका गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो अभी हम लोगों ने सोनी जी की तरफ से सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और गाने की बोल थी चेहरा तेरा जब जब देखूं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि रक्षाबंधन का सॉन्ग बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नैन टेलर शिव शिवरापुर से, और मुझे भी गाना सुनना है भारती जी, गाने की भूल पहुँची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि एमडी मीनू जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो, और नाम पता तो बिल्कुल नहीं है, तो प्लीज़ मुझे नाम पता अपना ज़रूर बताएं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय भारती जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से और सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा, हम अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हमारे बिना अधूरे तुम रहोगे, हमारे बिना अधूरे तुम रहोगे, कभी चाहा था किसी ने तुम्हें ये खुद कहोगे, न होंगे हम तो किसी ने तुम ये खुद कहोगे, मिलेंगे बहुत से लेकिन कोई हम सा पागल ना होगा। भारती जी नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भोर से निकलकर एक किनारा मिला है, जीने को फिर एक सहारा मिला है, बहुत कसम-कस में थी ये ज़िंदगी मेरी, अब इन ज़िंदगी में साथ तुम्हारा मिला है। और मैसेज करने वाले हैं गणेश धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, तो आपकी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल। और हेलो,
1: हाँ नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार मैम, कैसी हैं मैम?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी हम भी अच्छे हैं। आज तो मैम बहुत देरी से शो चालू हुआ है।
0: जी जी, थोड़ा कुछ काम था इसीलिए।
1: जी आरजे की कमी हो गई है। तो मैम गाना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: हर लबों पे सनम तेरा नाम आ रहे, सनम फिल्म का गाना है। हेलो।
0: हाँ, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: और मैम गाना सुनेंगे जितने रेडियो रिमझिम के भाई बहन सुन रहे हैं, सभी श्रोताओं को सुनेंगे सुनाएंगे, और आप भी सुनिएगा।
0: जी तो गाना प्ले करें।
1: जी मैम, थैंक यू मैम।
0: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू।
0: ओके।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
6: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: ब्रेक के बाद जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार भारती मैडम जी, अभी आपके प्रोग्राम से जुड़ गए हैं हम भी जितेंद्र सिवान जिला से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय भारती जी, हर हर महादेव, मैं भी शो से जुड़ चुका हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा और हमको भी गाना सुनना है, हमारा भी गाना बजा दीजिएगा। और गाने का बोल है और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। और बसंती देवी लामी चौर चौबरिया टोला से सुनना चाहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सावन की बूंदों में कुछ बात होती है, भीगी भीगी रातों में मुलाकात होती है, यूँ तो हर दिन खूबसूरत लगता है पर सावन में यादें कुछ खास होती हैं, हर बूंद जब दिल को छू जाती है तेरी याद चुपके से मुस्कुरा जाती है। और भारती जी जौहर बारिश, और लिख रहे हैं कि बारिश की बूंदों में प्यार का एहसास हो, सावन की हर फुहार में खुशियों की मिठास हो, महादेव की कृपया बनी रहे हर पल, आपका जीवन हमेशा खुशहाल हो। और बहुत ही प्यारी सी लाइन पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं करण मुर्मू हैदराबाद से, अभिषेक कुमार, रिंटू चौधरी, हम सबको गाना सुनना है और मुबारक ईद मुबारक। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं जो हर जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी की, पता ना फिल्म में टकराने से कैसे प्यार हो जाता है, कल मैं भी टकराया तो बोली थोड़ा। कल मैं भी टकराया तो बोली तोहर अंखियाँ फूट गई बा का, कारे नतिया के बेटा लौकत नहीं खेगा। और बहुत ही मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है सन्यासी रंजन जी की तरफ से। और पता नहीं इनको कहाँ कहाँ से इतनी मज़ेदार लाइन मिल जाती है, पूछती हूँ तो बताते नहीं हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास अरुण यादव जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और वॉइस के माध्यम से मैसेज पहुँचा हुआ है तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: अरुण कुमार यादव, गाना सुनने के बाद भोजपुरी खेसारी लाल अंकुश राजा के।
0: अंकुश राजा का गाना तो सुनना चाहते हैं पर बताए नहीं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, तो पूरी वॉइस भेजें आप ताकि मुझे पता चले। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती जी, कैसी हैं आप, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, रोहित देहरादून से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं गाने की बोल है आज कल याद कुछ और रहता। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है, तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रमझम 90.4 FM में।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना रोहित जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और उनकी तरफ से मैसेज पहुंच चुका है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी गाना प्ले करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं जो कि लिख रही हैं कि हेलो नमस्ते मैम, कैसी हैं, और विमल कुमारी आज सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी हम एक कवि हैं, अपने आप से कविता तैयार करते हैं और एक कविता बनाने में 2 दिन लगता है। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी। तो चलिए, आज आपने मेरी बातों का जवाब दे दिया और बहुत अच्छा लगा सुन के कि खुद से आप ये करते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मेरा नाम मनीष कुमार, कार्तिक राशि, और एक गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से, और मेरा भी मैं भी जुड़ गया हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँच हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिम 90.4 FM में।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: जी मेरा नाम राहुल कुमार होगा।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: गोपालगंज से।
0: जी जी, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: एक हिंदी सॉन्ग बजा दीजिए, हमारा कुछ तो होने लगा।
0: अच्छा जी, और गाना डेडिकेट भी है
1: जी आपको और जो भी रेडियो रिमझिम सुनने वाले श्रोता हैं सबको।
0: ओके जी, तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: अभी हम लोगों ने सुना राहुल जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचे हुए हैं और किसी अरुण यादव जी का व्हाट्सएप कॉल आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं व्हाट्सएप कॉल नहीं ले सकती, और व्हाट्सएप से अगर जुड़ना है तो आप अपनी पूरी वॉइस भेजिए ताकि उसमें गाना भी मेंशन हो, और मैं कॉल नहीं ले सकती। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मेरा गाना बजा दीजिएगा जी, आपका भी गाना प्ले होगा। और यहाँ पे सन्यासी रंजन जी की तरफ से पहुँचा हुआ है मैसेज जो कि लिख रहे हैं, कभी कभी अमीर दिखने के चक्कर में आइसक्रीम का ढक्कन बिना चाटे ही फेंकना पड़ जाता है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज तबरेज अहमद फ्रॉम ईस्ट चंपारण बिहार से, और एक सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, न्याय पारा विरही पलारी से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज भाई ठाकुर, गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मैडम जी, हमें गीत सुनना है, सुनवा दीजिएगा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, सरफरोज अली गोपालगंज से हम भी जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है उत्तम सोनी जी की तरफ से, और वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए वॉइस सुनते हैं।
1: हाय जी मैम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं? मस्त है ना? उम्मीद है एकदम मस्त और बिंदास आकाश होंगे आप, है ना? एक लिंक भेज रहा हूँ मैम, उसे प्ले कर दीजिएगा, और जितने रेडियो रंजन सुन रहे हैं मैं सभी लोगों को सुनाना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुना दीजिएगा। और सबसे पहले जितने रेडियो रंजन को सुन रहे हैं सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं उत्तम सोनी हरपुर से, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एकदम मस्त और बिंदास आकाश होंगे, है ना? जी सन्यासी रंजन बाबा, नमस्ते, प्रणाम, ख्याल बाटे, किशन बानी, हम के उम्मीद बाटे, एकदम मस्त हो गए हम रुआ। और एक लाइन सुनाओ, मैंने सुने, हाँ अच्छा बाटे, ओ कह देना, आजाद परिंदा हूँ अपने जिंदगी का, कि आजाद परिंदा हूँ अपने जिंदगी का, नफरत हो या मोहब्बत दोनों ही रेल खोल कर करते हैं है ना?
0: उत्तम सोनी जी के यहाँ से बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है मर्जावा मूवी से, तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: सोया हम गटर में पले हैं, गटर में ही जिएंगे और गटर में ही।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 99393-65923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद फिर से रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, थैंक यू सो मच मैम गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोने जी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैम सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा और मैम मेरा सॉन्ग कब बजेगा। और गाने की यहाँ बोल पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपका भी गाना प्ले होगा पर थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मोतिहारी से एमडी मेनू गाना सुनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा। उससे पहले यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 एफएम में।
1: मेरा नाम है अब्दुल कुदूस, मेरा घर है पाखोपाली
0: जी जी,
1: डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। मैं बहुत पुराना लिसनर हूँ, मेरा मोबाइल खराब हो गया इसलिए आपको कॉल किया, नहीं तो मैं वर्कशॉप से वॉइस भेजता।
0: जी जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप इससे भी बता सकते हैं। बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
1: ये गाना सुनना है, मैं जब जब तुझको पुकारूं तो दौड़ी चली आए नदिया के बांध ले।
0: और गाना सुनाना भी है?
1: नहीं, किसी को नहीं सुनाना है, आज तो त्योहार का दिन है, वो लोगों को सुनाएंगे तो अच्छा नहीं है।
0: अच्छा जी,
1: ईद का दिन है, सिर्फ हम और आप और लिसनर लोग सुन ले।
0: जी जी बिल्कुल, तो चलिए गाना प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रमजान 90.4 एफएम में।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

तो अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग तुझे जब जब तू जब जब मुझको पुकारे, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा सॉन्ग प्ले कीजिए। तो जी आपका भी सॉन्ग प्ले होगा, उससे पहले जिसकी फरमाइश पहुंची हुई है पहले उसकी पूरी कर दूं, एक दो जो बचे हुए हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं, नमस्कार भारती जी, आज मौसम बढ़िया है आपकी तरफ कैसा है? न्याय पारा विरई से प्रमोद कुमार साहू, मुकेश कुमार साहू, दोस्त खोमलाल साहू और अमलेश्वर से गाना सुनना है। और तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और छत्तीसगढ़ और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि

और यहाँ दिनेश कुमार जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, दूध में उबाल आने पर लेडीज़ क्यों दौड़ती हैं, मलाई बचाने दूध बचाने बिल्कुल नहीं, गैस और प्लेटफॉर्म पोछने ना पड़े इसीलिए। तो बात तो सही है क्योंकि डबल मेहनत पड़ जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय नमस्कार मैम, कैसी हैं आप, मेरा भी हाजिर लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और दिलीप शर्मा पठरा टोला से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि विमल कुमारी आज गाना सुनना है, और गाने की बोल पहुंची हुई है, और गाने की बोल है कहाँ गए ममता भरे दिन, और यही सॉन्ग बजा दीजिएगा, और ये सॉन्ग स्पेशल रक्षाबंधन के लिए बजा दीजिएगा, और सुनने वाले सभी रेडियो सुनने वाले को और घर वाले को भी सुनाना है, और मेरा भी सॉन्ग बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो चलिए बिना देरी किए आपके लिए गाना प्ले करते हैं, और ये गाना बहुत ही खूबसूरत है, तो एंजॉय करते हैं रेडियो रमझिम 90.4 FM में।

सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग विमल जी की तरफ से, और कहाँ गाने की बोल थी, कहाँ गए ममता भरे दिन। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय नमस्ते मैम, कैसी हैं, और विमल कुमारी आज सॉन्ग। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, सन्यासी बाबा को हर हर महादेव, गुड आफ्टरनून, और सभी दोस्तों को भी। और मनीष पांडे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि

0: और मैसेज मुझे लिख रहे हैं, नमस्कार प्रणाम, और हम अखिलेश मेहताब इसरा नवादा पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से, और मुझे मैसेज पहुंचा हुआ है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अरुण जी प्लीज़ कॉल ना करें व्हाट्सएप पे, और यहाँ पे अरुण जी की तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: अरुण यादव धर्मलाल जैगी भोजपुरी गाना सुने बट अंकुश राजा के कोई भी नाव का अंकुश राजा लिखे का ना वाला हमारा है सेवन नो लिखे का ना वाला खाली वॉइस दे लिखे का हमारा ना वाला दोनों अनपढ़ बात है।
0: और ये अंकुश राजा का गाना सुनना चाहते हैं। तो और अंकुश राजा का तो ये सॉन्ग नहीं है, और ये खेसारी लाल का सॉन्ग है पायल आवाज करता। तो चलिए आपके लिए खेसारी लाल का सॉन्ग प्ले कर देते हैं, और एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रंजन 90.4 FM में, और सो है योर वॉइस योर चॉइस का। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मेरा सॉन्ग दो दिन से बोला हूँ पर अभी तक नहीं बजा। भारती जी, हमारा साला साहेब हरिंदर जी नाराज हो रहे हैं। तो मैसेज करने वाले हैं राकेश भारती बक्सर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और कल तो शो चला नहीं था और परसों बहुत सारे लोगों की फरमाइश बची हुई थी, तो आज आप अपनी गाने की फरमाइश कर सकते हैं, और गाने की फरमाइश कर दीजिएगा तो प्ले कर देंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि हमारा गाना कब बजेगा मैडम जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और नया टेलर जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहा है, नाइस सॉन्ग भारती जी, मेरा भी गाना बजा दीजिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, नमस्कार प्रणाम भारती मैम, हम भी प्रोग्राम से जुड़ गए हैं और सभी रेडियो रिमझिम से जुड़े हुए लिसनर को राधे राधे जी, तिरंगा मूवी का गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। और राजेंद्र कुमार गुप्ता, अयोध्या का निवासी हूँ और जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैम मेरा नाम उपेंद्र कुमार इहरौली धन कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहा है, मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं तबरेज अहमद ईस्ट चंपारण बिहार से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की बोल है जो कि पहुंची हुई है हिट स्टोरी 4 मूवी से, और गाने की बोल है तुम मेरे हो सॉन्ग। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और यहाँ पे राम कुमार पांडे जो कि लंदन से जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए शामिल करते हैं क्या है मैसेज।
1: भारती मैम नमस्कार प्रणाम है, और जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोग को हमारे तरफ से नमस्कार प्रणाम है। और अभी एक गाना चल रहा था, गाना था कि अरे हमार दिल तो हर दिलवा पे राज करता, हमार दिल तो हर दिलवा पे राज करता, राजा पायल हो राजा पायल उतारी द आवाज करता, राजा पायल उतारी द आवाज करता। तो भारती मैम नमस्कार, तो इस पे गाने पे बोलना चाहता हूँ कि गाने का मतलब है कि पत्नी जो है ना पति से बोली कि बाजार जा रहे हैं तो हमारे लिए कुछ सामान ले आइए, जैसे कुछ गहना हुआ, लिपस्टिक हुआ और भी सब सामान हुआ, ये लाने के लिए बोली थी पत्नी, बड़े प्यार से बोली थी। तो पति आया लेकिन वो भूल गया, अब भूल गया तो पत्नी को बहुत गुस्सा आया। तो पत्नी जो है ना, रात का समय था, तो शाम के टाइम में ही बाजार लोग जाते हैं ना, तो रात का समय था, तो पत्नी को बहुत गुस्सा आया, तो इसीलिए बोली कि राजा जी ये पायल हमारा उतार दीजिए। जब जो पति है ना पायल जब उतारे तो पत्नियां जो है ना अब इतना लात मारी कि पति बेचारा बेहोश हो गया। तो इसका मतलब कि वो पायल उतारने का यही मतलब था कि पड़ोसी कोई जाने न कि काहे मार खा रहे हैं, यही बात थी। तो भारती मैम एक औरत बोली, मैंने आज पति को बोला कि मैं अगले जन्म भी इसी घर की बहू बनकर आऊंगी। पति ने बोला हम इसी जन्म में ससुरा घर वे बेच देंगे। तो सही बात है, बस एक ही जन्म का कसम खाना चाहिए, चार सातवां जन्म कैंसिल करना चाहिए, एक ही जन्म तक रहना चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड से प्यार करना चाहिए, चाहे खुद की हो या दूसरों की हो, छोटी सी जिंदगी में क्या अपना क्या पराया करना चाहिए। भारती मैम जाते जाते यही कहूँगा कि पत्नियाँ भी कमाल की होती हैं, खुद मेकअप लगा कर गोरी हो जाती हैं और बच्चे काले, माने बच्चे काले दिखते तो कहती है ससुरा बाप पर गया है बाप पर। तो फिर जाते जाते यही कहूँगा कि राजा पायल हो राजा पायल उतारी द आवाज करता, राजा पायल उतारी द आवाज करता।

0: यहाँ पे हमारे पास राम कुमार जी की तरफ से बहुत ही बढ़िया फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ था, और यहाँ पे जो कि हमारे पास और भी काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भारती मैम, मैं भी जुड़ गया हूँ और गाना सुनना चाहता हूँ, और रक्षाबंधन का गाना सुना दीजिएगा, और कल सो नहीं चल रहा था मैडम जी, क्या कल मैं फरमाइश तो किया पर मेरा गाना पता नहीं कब बजा कि नहीं बजा और मैं सुन नहीं पाया, और मैडम जी मेरा गाना बजेगा आज, नहीं बजेगा प्लीज़ मुझे बता दीजिए, और गाना सुनना चाहता हूँ बंधन फिल्म का, रक्षाबंधन का गाना। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा, और कल शो नहीं चला था इसीलिए किसी के गाने की फरमाइश पूरी नहीं की गई थी, और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, जो कि लिख रहा है मेरा सॉन्ग बजा दीजिए, और गाने की बोल यहाँ पहुंची हुई है, और राकेश भारती जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और इनके साथ जुड़े हुए हैं हरिंदर जी, और गाना सुनना चाहते हैं कहता कंगना पवन सिंह की आवाज़ में, और ओल्ड सॉन्ग है और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: हो रही सब बात कहे गिरावती

तो अभी हम लोगों ने सुना राकेश भारती जी की तरफ से पवन सिंह की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि

0: लिख रहे हैं कि हमारा गाना कब बजेगा जरा हमको बता दीजिए, फिर टोकरी के नीचे ढांप दीजिएगा। और ऐसा नहीं है, सभी के गाने बजेंगे और किसी को ये नहीं छोड़ना है। और लिख रहे हैं कि जय श्री कृष्ण भारती जी, राधे राधे, न्यायपारा विरही जिला बालोद छत्तीसगढ़ से लीला साहू, बिमल साहू, बिमला साहू खिलस्वरी रायपुर से, और प्रमोद कुमार साहू। और आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है और मुझे बहुत बढ़िया लगता है जो हर राज्य सुनता है, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यह हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, और क्या हाल है मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं अच्छा गाना चला था। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं भी हजरा सूरत से, और मेरा भी हाजरी लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से कुछ लाइंस पहुंची हुई है जो कि लिख रही हैं कि मैंने भी बहुत सपने देखे हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, लेकिन आज हालात कुछ ऐसे हैं, ज़िंदगी का एक एक पल जीना मुश्किल हो रहा है। और काफ़ी ही इमोशनल लाइन पहुंची हुई है हजरा जी की तरफ से। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि सन्यासी रंजन जी लिख रहे हैं कि घरे गमी तो देखवी पाँच छः मेहमान बैठल रहुए लो, हम खुश हो के उसके पैर छू, उनका लोग इनके पैर छू लो, हमें बाद में मालूम चलुए कि भैंसिया कीने आयल वालो। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मनीष जी की हमारा गानवा हमारा भी गाना बजा सकती हैं क्या, तो जी बिल्कुल आपके भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सोनी भारती जी, हमारा सॉन्ग बजेगा कि नहीं, आंसर यस या नो, तो जी आपका भी गाना बजेगा। और उपेंद्र कुमार जी मैसेज करने वाले हैं और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: सोनी मैम नमस्ते, मेरा नाम उपेंद्र कुमार, अहिरौली दान कुशीनगर यूपी से, मुझे गाना सुनना है राखी हर साल कहे सावनवा में, हिंदी सॉन्ग है, प्लीज मैम गाने को प्ले कर दीजिएगा, मैं अपने पूरे परिवार वालों के साथ गाना सुनना चाहता हूँ। ओके मैम गाने को प्ले कर दीजिएगा।

0: और इसी के साथ यहाँ हमारा न्यूज़ का टाइमिंग हो गया है और न्यूज़ के बाद आपका गाना प्ले कर देंगे। अभी गाना तो बजा भी नहीं है, तो चलिए
1: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इश्यूज पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी ऑन H1N1 इन्फ्लुएंजा स्प्रेड इन कंट्री सेज नो कॉज फॉर पैनिक जस्ट हाइटन विजिलेंस रिक्वायर्ड। फेस्टिवल ऑफ ओनम बीन सेलिब्रेटेड विद ट्रेडिशनल फर्वर। बर्थडे ऑफ प्रॉफिट हजरत मोहम्मद ईद मिलाद उन नबी बीन सेलिब्रेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड विद दैट वी एंड द मिड डे न्यूज।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
3: India today stands as the fastest.
4: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
3: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
2: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु हैं।
3: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन।
4: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
3: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
2: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
5: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
6: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
7: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
2: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सिलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार भारती के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दास गुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरनमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन,

0: ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर कॉल 9170856587।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894 18744।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: ऑलराइट।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388 8947 या 9198 8869 73।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज़ के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 88 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि प्रमुख जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून वन सेकेंड डियर भारती जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार मैडम जी, मैं गाना सुनना चाहता हूँ निकेश कुमार चौहान पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से, और गाने की बोल पहुँची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, राधे राधे प्रणाम जी, मैं शिवांश चौधरी प्रेमनगर बस्त्रा राजा लालगंज मिर्ज़ापुर यूपी 63 से, और मुझे गाना सुनना है और गाने की फरमाइश पहुँच हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। तो जी आपकी भी गाने की फरमाइश पूरी होगी। और उससे पहले जो कि हम न्यूज़ से पहले गाना प्ले करने वाले थे, और जो कि प्ले करते ही न्यूज़ पे चले गए। तो चलिए मैसेज करने वाले थे उपेंद्र कुमार, और गाना सुनना था राखी का, गाना पहुंचा हुआ था, और राखी का बोल है, गाने की बोल है राखी हर साल कहेला सवानवा में, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: अभी हम लोगों ने सुना राखी का बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग उपेंद्र जी की तरफ से। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मनीष कुमार गुप्ता अलमपुर सासाराम बिहार से और गाना सुनना चाहता हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय मैम अस्सलाम वालेकुम, मेरा भी सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा और गाने की बोल है। गाने की बोल बहुत ही खूबसूरत है और अभी गाना प्ले नहीं करना इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। और मैसेज करने वाली हैं सुहाना जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम भारती मैम, हम भी प्रोग्राम से जुड़ गए हैं और रेडियो रंजन में जुड़े हुए लिसनर को राधे राधे जी। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जुड़े हुए हैं राजेंद्र कुमार गुप्ता अयोध्या से, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, हेलो मैम राधे राधे, पाजी यूपी 54 से जुड़े हुए हैं और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि वफा के दीप आंखों में जलाकर देख लेते हैं, हम भी मोहब्बत आजमा कर देख लेते हैं, सुना है उनके महफिल में उजाले कम नहीं होते, हम अपने दिल का एक टुकड़ा जलाकर देख लेते हैं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं पाजी यूपी 54, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो हाय नमस्ते भारती दी, श्याम सुंदर संग्रामपुर से जुड़े हुए हैं और बहुत लेट हो गया है भारती दी, गाना प्ले कर दीजिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रही हैं सविता चौहान भोज छापर से जुड़ी हुई हैं। और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: नमस्ते दी, कैसे हैं? हम ठीक हैं। सविता चौहान भोज छापर से बहुत दिन के बाद मैसेज किए हैं, मुझे गाना सुना दीजिएगा, क्या मौसम आया है, यही वाला सुना दीजिए प्लीज दे।
0: तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, Glamour X 1,01,354 रूपए और X3 125R 1,10,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और सो है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाली हैं सानिया सैफी जी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रही हैं मेलोडियस ट्रैक क्या मौसम आया है, और यहाँ पे लिख रही हैं अस्सलाम वालेकुम क्या खैरियत है जी आपका, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरा खैरियत तो ठीक है, आप अपना बताइए आप कैसी हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैडम जी कैसी हैं, आशा करता हूँ कि अच्छी होंगी, और मुझे भी 2 हफ्ते हो गए हैं गाने की फरमाइश करूँ क्या बता दीजिएगा। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं अपने गाने की फरमाइश। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास लिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम, नाम अखिलेश मेहताब और इजरा नवादा संग्राम पूर्वी चंपारण से, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ और गाना सुनना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि और मनीष कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और लिख रहे हैं कि सन्यासी बाबा को हर हर महादेव, गुड आफ्टरनून सभी रेडियो दोस्तों को, और गाना सुनना है सभी, सुनाना है सभी रेडियो श्रोता बंधु को, और हमारा भी गाना बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी एक बार फिर से, और आपका भी गाना प्ले होगा। और चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और गाने की बोल है ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: अभी हम लोगों ने सुना मनीष जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और मूवी नेम है करण अर्जुन और गाने की भूल थी ये बंधन तो प्यार का बंधन है, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि सानिया साफी जी लिख रही हैं, मेरा भी खैरियत ठीक है, चल रहा है, ठीक ठाक चल रही है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है उन्हीं की तरफ से जो कि लिख रही हैं, बारिश हुई और हम भीग गए वाह वाह, बारिश हुई और हम भीग गए वाह वाह, आगे क्या हुआ, होना क्या था, धूप निकली और हम फिर सूख गए वाह वाह। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़ी हुई है, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अब मेरा गाना बजा दीजिए, अभी तक नहीं बजा है, प्लीज़ बजा दीजिए बसंती देवी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा, उससे पहले एक गाना प्ले करूँगी। और गाना लिख रहे हैं मनीष जी, गाना सुन के बहुत अच्छा लगा, मस्त गाना है। तो जी बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा गाना था। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि श्याम सुंदर जी की तरफ से पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश और क्या है इनकी वॉइस।
1: बलमा बड़ा नादान से खीरे, बलमा बड़ा नादान, यही सॉन्ग हमारा गाना नहीं चलाई थी भारती में और लिख कर भेज दिए, बोलेंगे जी गाना मैं आपका बजा दिया, सुन रहा हूँ जिस टाइम से आप आई हैं ना उस टाइम से मैं सुन रहा हूँ।
0: तो अभी तो मैं आपका गाना प्ले नहीं की हूँ और ना ही मैंने लिख के भेजा है कि आपका गाना चला है या नहीं चला है, बस लिखे हैं नेक्स्ट आपका गाना प्ले होगा, सुन लीजिएगा। और तो चलिए मैं आपके गाने को प्ले करूँगी, बलमा बड़ा नदान, तो इंजॉय।

0: अभी हम लोगों ने सुना श्याम सुंदर जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग बलमा बड़ा नादान, और इसी के साथ यहाँ पे उनकी तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ वॉइस के थ्रू, तो सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: थैंक यू दीदी गाना बजाने के लिए, गाना सुन भी रहे हैं काम भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुनकर।
0: तो लग रहा है श्याम सुंदर जी अभी खुश हैं अपना गाना सुन के, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग सोना नाल जी और नमस्ते मैडम हम भी जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है उससे पहले लिख रहे हैं हमारा भी गाना बजा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और उससे पहले यहाँ पे हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: हम खाना से बोल रहे हैं प्रसाद।
0: क्या हाल चल रहा?
2: हाल चल ठीक, बात दिन ठंडा फल पर आज मजा
0: आता। तो बता दी कौन गाना सुने?
2: अब राखी दिन आए बा, फिर राखी ने गाना बजा दे।
0: बता दे कौन सा?
2: चंदा रे जाके भैया से ना तेरा याद करे।
0: और गाना सुना हूँ के बा?
2: विमल कुमार सुनिहान, नीतू कुमार सुनिहान, नीलम कुमार सुनिहान, अनुराधा देवी सुनिहान, और गांव के लोग जितना लोग सब कुछ सुने।
0: तो फिर गाना प्ले कर दे लवानी, सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुरु नानकपुरा बठिंडा पंजाब से किशोर सबलिनिया, सावित्री सबलिनिया, सुमन सबलिनिया, बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और कोई भी गीत में शामिल कर लेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। हम रेडियो रंजिम से जुड़ गए हैं, और नमस्कार मैडम जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मैडम जी, तारकेश्वर मांझी दुबई से। मैडम जी, मेरा भी एक सप्ताह किस दिन होगा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि तुमसे मिलना दुआ में छोड़ दिया, हमने सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया, दिल का रोग है और वो दवा है, मर्ज अपना हमने दवा पे छोड़ दिया, आग लगा चुकी है मगर फैली नहीं है, आग लग चुकी है मगर फैली नहीं है, ये काम हमने हवा पे छोड़ दिया। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं तारकेश्वर जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, पाजी की चेहरे पर रौनक और दिल में एक तूफान रखते हैं, चेहरे पे रौनक और एक दिल में एक तूफान रखते हैं, हम वो हैं जो अपने उदासी में भी मुस्कान रखते हैं, कोई पढ़ना ले हमारी आंखों से अधूरा ख्वाब हमारा, इसलिए महफिलों में भी पलके झुका कर रखते हैं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है पाजी। और यहाँ पे हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं संजय यादव दुबई से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय मैम, हम भी जुड़ गए हैं और बनारस से अनिल कुमार, तो बहुत बहुत स्वागत है। और लिख रहे हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती में मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला मैं मोम हूँ, उसने मुझे छू कर नहीं देखा, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं अनिल जी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है सुहाना जी की तरफ से, और गाना का बोल है अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं खे, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रंजीम 90.4।

0: अभी हम लोगों ने सुहाना जी की तरफ से सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग पवन सिंह की आवाज़ में अखिया लड़ल व जब से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि सानिया जी लिख रही हैं कि सारे गाने को फील करने वाला गाना वाला सॉन्ग, वाह वाह और वाह क्या गाना है, मेरा फेवरेट सॉन्ग। तो यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैम गाना मेरा गाना बजेगा क्या आज? तो जी नहीं, आपका गाना शुक्रवार को ही बजेगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, आफ्टर गुड आफ्टरनून मैम, डॉक्टर संतोष जैसल फ्रॉम माँ पूजावंती हॉस्पिटल बसंत वस्त्रा राजा लालगंज मुजफ्फरपुर से, कोई एक गाना सुना दीजिएगा अच्छा वाला, और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ सुहाना जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रही हैं, शुक्रिया गाना सुनाने के लिए। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं, हेलो भारती जी क्या हाल है, और मैं विक्रम चौहान। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी विक्रम जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मनीष कुमार गुप्ता आलमपुर सासाराम बिहार से, और अंकुश राज का गाना सुनना है और राखी का गीत। और इनकी तरफ से वॉइस पहुंची हुई है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: भारती मैम हमरो गाना सुनवा दीजिए, अंकुश राजा का कोई भी रक्षाबंधन गीत सुना दीजिए मैम।
0: तो चलिए इनके लिए अंकुश राजा का प्यारा सा सॉन्ग प्ले करती हूँ, राखी का, और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

सुना अंकुश राजा की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनीष कुमार गुप्ता जी की, थैंक यू भारती मैम, राधे राधे मैम गाना प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कोई भी रक्षाबंधन का सॉन्ग सुना दीजिएगा हिंदी गाना। और शिवांश चौधरी प्रेमनगर लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि गोविंद कुमार जलंधर पंजाब से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रही है सानिया, थैंक यू सानिया जी मेरा सॉन्ग को पसंद करने के लिए। और मैसेज करने वाली हैं सुहाना जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि राजेंद्र कुमार गुप्ता अयोध्या के रहने वाले और गाना सुनना चाहते हैं तिरंगा मूवी का गाना, और गाने की बोल है इसे समझो ना रेशम की डोर भैया, राखी का मतलब है प्यार भैया। और बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश है, तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 91.4 FM में। और

0: भैया।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
3: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रुमझिम 90.4 FM में, और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा है प्रमुख जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, बेहद खूबसूरत गीत और फरमाइश करने वाले भाई को दिल से धन्यवाद। और ये गीत हमारा भी पसंदीदा है, और RJ भारती को भी थैंक्स फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग, सुपर सॉन्ग। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मेरा गाना बजेगा या नहीं। और यहाँ पे हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि कौसर अली शिवराजपुर से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और गाना सुनना चाहते हैं, गाने की बोल है छागल पे छोगो नथिया पे नोगो, और फोन सिंह की आवाज़ में है। तो चलिए बिना देरी किए गाने प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रमजिम 90.4 FM में।

अभी हम लोग सुन रहे थे पवन सिंह की आवाज़ में खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं पिंटू परवाना दुबई से, और पिंटू का मामा सुन रहे हैं और साथ में जुड़े हुए हैं रविंदर भाई और कमलेश जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि सभी की तरफ से बाय बाय के मैसेजेस पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो भी लास्ट फरमाइश पहुंची हुई है लिख रहे हैं कि, और जिनकी भी फरमाइश छूट गई है वो उनकी कल प्ले हो जाएगी। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि निकेश कुमार चौहान पूर्वी चंपारण से जुड़े हुए हैं और संग्रामपुर के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाना सुनाना चाहते हैं श्याम सुंदर जी को, सोने लाल जी को, संदीप जी को, मिथिलेश जी को और दिनेश जी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और लिख रहे हैं हमारा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। और क्या हुआ मैडम जी, हमारा भी गाना प्ले कर दीजिए, मोबाइल का बैटरी कम है। तो चलिए कोई बात नहीं। और इनकी तरफ से बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और मूवी है बंधन और इसी का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ। और इसी के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हमारे साथ मैडम, मैं रिंकू सिंह राजस्थान से, और मैडम जी मुझे एक गाना सुनना दो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाना तो अभी मैं नहीं सुना सकती क्योंकि टाइमिंग पूरी हो चुकी है, और आप अपने गाने की फरमाइश कल करें तो मैं बजा दूँगी। और इसी के साथ आप सभी से लूँगी आज विदा, और आप सब सुनते रहें ये प्यारा सा सॉन्ग बंधन मूवी से।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-89693।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: All right.

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करे 85070-32042 पे।
6: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
9: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
11: ऑलराइट।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज

0: गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
4: ऑलराइट।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: थैंक यू मैम। मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: बहुत बढ़िया। भारती मैम बोल रहे हैं?
1: हाँ
2: जी। थैंक यू। गाना सुना है मैम?
1: जी बता दीजिए।
2: जय विक्रांता मूवी का तेरा मेरा रिश्ता है सबसे आला, यही सॉन्ग सुनना है मैम। आपको और सभी रेडियो रंजन से जुड़े हुए श्रोता दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ।
1: अच्छा, चलिए।
2: हेलो।
1: हाँ
2: हाँ जी।
1: आप पहली बार कॉल किए हैं क्या? कि
2: नहीं, पहली बार तो नहीं किया, एक्चुअली अब की तीसरी या चौथी बारी लगा है। सोनी मैम से बात हुई थी एक बारी, उसके बाद आपसे आज बात हो रही, पहली बार आपसे बात हो रही है।
1: वही तो बोल रहे हैं।
2: जी जी,
1: चलिए कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा।
2: थैंक यू मैम।
1: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
2: ओके मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन नेटवर्क में।
0: जी नमस्ते आपको।
1: जी नमस्ते,
0: अनिल बात कर रहा हूँ छोटपुर से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बस बढ़िया, अपना बताइए।
1: मेरा भी ठीक ही है।
0: ठीक ही है या फिर ठीक है?
1: नहीं, थोड़ा सा तो गड़बड़ है, तो ठीक ही है बस।
0: तो वायरल फीवर चल रहा है, वो तो नहीं हुआ ना?
1: सर्दी थोड़ा सा, हम लोग को यहाँ पे सरद गर्म हो ही जाता है कभी कभी।
0: अच्छा, चलिए सीजनल है, इससे ज्यादा घबराने की बात नहीं है।
1: अब इसमें रहते हैं जब तक ठंडा, बाहर जाएंगे तो फिर गर्मी तो हो जाता है।
0: ये ठीक बात है, उसी में अपना सामंजस्य बना के रहना है।
1: कहाँ कल तो चला पाए थे कल?
0: हाँ, कुछ ठीक लगता
1: है।
0: नील कमल सिंह का
1: सैड सॉन्ग,
0: कोई भी सैड सॉन्ग थोड़ा अच्छा वाला बताइएगा, नया मेरा इधर का।
1: आप बता देते तो और अच्छा होता है।
0: वो वाला सुना दीजिएगा, बिना तड़के दिलवा के कभी आराम ना मिले, सही कुछ है सही वाला। डेडिकेशन रहेगा आपको, मनोरमा जी को, आर के सोनी जी को, और लुधियाना पंजाब वाले भैया जो है प्रमुख भाई, उनको सुनते हैं गाँव का नाम। रामा जी भैया के बहुत अच्छे मित्र है, मतलब रेडियो द्वारा ही मित्र बने हैं वो भी।
1: अच्छा, मुझे भी याद था, अभी तो फिलहाल नहीं याद आ रहा है।
0: भोला जी पचखेड़ा से?
1: हाँ, भोला जी पचखेड़ा से।
0: हाँ, उनको सुनवाना है। और एक इमरान भाई हैं, दुबई खुलते हैं आपके शो में, उनको भी।
1: हेलो, हाँ बोलिए, आपका आवाज कट रहा है।
0: हाँ हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो और बाकी जो लोग का नाम नहीं ध्यान दे रहा है, उन सबको सुनवाना है।
1: बिल्कुल,
0: ट्राई कर रहे थे काफी टाइम से, अब नहीं लग रहा था, पता नहीं इसको क्या हुआ था।
1: नहीं, अभी तो मतलब कॉल चल ही रहा है, सबका आ ही रहा है एक एक करके।
0: ठीक है, प्ले कर दीजिएगा।
1: ओके,
0: थैंक यू।
1: गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
8: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल ID radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94 में। हेलो, आवाज कट कट के आ रही है।
11: हाँ बोलिए, सुना रहा है।
10: नाम बता दीजिएगा अपना।
11: ज्योति कुमारी।
10: अच्छा जी, और कहाँ से हैं?
11: बंजारी।
10: अच्छा, और कैसी है ज्योति जी?
11: अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
10: हाँ हम भी ठीक हैं। तो और सब बताइए, क्या करती हैं आप?
11: पढ़ते हैं।
10: किस क्लास में हैं अभी?
11: 9th में।
10: अच्छा, अभी पढ़ाई उसके से चल ही रही होगी।
11: हाँ
10: चलिए, फिर तो अभी बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
11: राखी वाला, भैया राखी बन।
10: वाला हमारा कुछ सुना।
12: अच्छा, और गाना सुनाना भी है किसी को?
11: हाँ, इसका रेडियो वाला
12: चलिए
11: आपको भी।
12: बिल्कुल, हम भी सुनेंगे, पहले तो हम भी सुनते हैं। ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो,
1: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: मौसम ठीक है मैडम?
1: आप बताइए, आप ठीक है?
0: हाँ मैडम ठीक है। आपको जुलूस मुबारक हो मेरी तरफ से।
1: जी आपको
0: आज जुलूस मोहम्मदी है, मतलब पैगम्बर शहादत की याद में मनाए जा रहे हैं, हुजूर की पैदाइश है। जी

0: तो ठीक है मैडम।
1: हाँ और सब ठीक है। आप बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है आज?
0: अच्छा आप भारतीय मैडम बोल रहे हैं मैडम? समझ लीजिए आपका थोड़ा आवाज कुछ थोड़ा अलग है क्योंकि सोनी जी की आवाज थोड़ा अलग है। आवाज तो एक ही रह गया था, मतलब थोड़ा सा चेंज है आवाज। तो नाता वगैरह हो गया मैडम?
1: हाँ नाता हो गया हम लोग का।
0: तो आइए घूमने के लिए,
1: मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे लोग।
0: तो ठीक है ना?
1: सब ठीक है।
0: एक सॉन्ग है मैडम,
1: बता दीजिए।
0: जुलूस मोहम्मदी के लिए तौर पर एक मरहबा या मुस्तफा। हाँ ये वाला सॉन्ग उसमें आता है ना डीजे सॉन्ग में?
1: डीजे सॉन्ग में
0: जी मैडम।
1: अच्छा समझ गए।
0: डीजे सॉन्ग जी मैडम।
1: जी जी समझ गए। एक बार और मतलब क्लियरली गाना बता दीजिए।
0: मरहबा या मुस्तफा।
1: जी जी
0: डीजे सॉन्ग में मतलब डीजे में जो बता है होगा।
1: हाँ
0: हाँ तो वही बजा दीजिएगा।
1: और गाना सुनाना भी है
0: मैडम जिसके लिए आप हैं और जितने सुनने वाले तमाम श्रोताओं को।
1: जी जी बिल्कुल। तो
0: गाना
1: आज नहीं तो कल बच जाएगा।
0: आज नहीं तो कल।
1: हाँ
0: और किसी का कॉल तो बचा हुआ नहीं है ना मैडम? क्या
1: नहीं पहले का कॉल तो नहीं बचा है, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बस वही सब है।
0: तो आज ही बजेगा?
1: हाँ
0: ठीक है मैडम 5 बजे के बाद।
1: हाँ हाँ
0: ठीक है मैडम ठीक है।
1: ओके गाना प्ले करते हैं सुनते रहिए रेडियो 91.4 FM।
0: ठीक है मैडम पूरा सॉन्ग सुना देगा मैडम?
1: बिल्कुल
0: ठीक है। थैंक यू मैडम।

0: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
10: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
11: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM
13: में। मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ
14: जी।
13: कल्लेपुर से मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ।
14: हाँ जी, क्या हाल चाल है लक्ष्मी जी?
13: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
14: मेरा भी ठीक है।
13: मुझे गाना सुनना है।
14: बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा गाना।
13: ये जो गाना नहीं है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
14: एक्चुअली भक्ति सॉन्ग तो बजता है, पर थोड़ा मूवी का होना चाहिए एल्बम में।
13: अच्छा, मूवी वाला। क्या तो कोई मूवी का अच्छा गाना, तो मैं तो चूज नहीं की, यही चूज की थी।
14: अच्छा जी, क्योंकि इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, एक का सुनाइए तो सारे लोग भिड़ जाएंगे।
13: और ये हनुमान चालीसा बज सकता है?
14: इस सबके लिए सुबह में प्रोग्राम जो चलता है उसमें बसा है।
13: जी जी, ये तो अपने पसंद से कोई अच्छा गाना ये प्ले कर दीजिएगा।
14: ओके जी
13: जी। और मैं ये अपने भाई बहन सबको सुनाना चाहती हूँ, फैमिली में सबको।
14: जी जी बिल्कुल
13: जी। तो मेरा गाना कब बजेगा मैम?
14: आपका गाना आज शाम को, नहीं तो कल शाम को बज जाएगा।
13: अच्छा, कितने बजे से शो स्टार्ट होता है ये?
14: ये वाला 5 से 7 चलता है शाम को।
13: ओके,
14: और इसी को सेम रिपीट किया जाता है अगले दिन 9 से 11।
13: ठीक है,
14: गाना सुनते रहिए रेडियो रंजन 91.4।
13: थैंक यू।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है

0: आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, मॉड्यूलर ओटी, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 29 94 911। जी हाँ, 80 29 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो,
5: हेलो, बोलिए।
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिविजन 90.4 FM में।
5: थैंक यू मैडम जी, गाना सुनना है जी हमको।
4: बिल्कुल सुनाऊंगी, नाम बता दीजिएगा आपने।
5: बाबू की आंगना से उड़ी जाओ होशी रही की आंगना भईले परदेश।
4: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना है?
5: गाना तो बस अपने रेडियो रिविजन का पूरा परिवार को सुनाना है, पूरा टीम जो है और जितने भी आदमी सुनते हैं यहाँ से लेकर बाहर तक सबको सुनाना है।
4: तो अपना नाम भी बता दीजिए ताकि लोगों को पता गाना सुना रहा है।
5: तो मेरा नाम तो बहुत दिन से फोन करते अरुण मिश्रा है।
4: मतलब मुझे तो मालूम है लेकिन
5: अरुण मिश्रा गोपालगंज से। कल तो गाना मैं नहीं सुन पाया, ये जो बाबुल प्यारे रुए वो गाना तो हुआ लेकिन मैं नहीं सुन पाया, मैं था पूजा में।
4: अच्छा,
5: सुबह के गवाए थे और शाम को हुआ 5 बजे लेकिन मेरे को नहीं मिला बोलने के लिए।
4: इस समय सुन लेना चाहिए था, 9 से 11
5: बजा है। जी जी जी, दूसरा बार कॉल करेंगे तो फरमाई देंगे।
4: कोई बात नहीं
5: जी। ओके, ठीक है।
4: और सब ठीक है ना?
5: बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मौसम तो अच्छा है। पूजा पाठ चल रहा है
4: जी।
5: आप लोग ठीक है ना?
4: हाँ हाँ, हम सब भी ठीक है।
5: चलिए ठीक है।
4: ओके, फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
5: ओके।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। नाम बता दीजिएगा अपना।
0: आलिया खातून।
1: और आलिया जी कहाँ से हैं आप?
0: गोपाल गंज सारे आनंदों से हम रहते हैं।
1: अच्छा जी, तो अभी आप पढ़ती हैं?
0: हाँ।
1: कौन सी क्लास में हैं?
0: यूकेजी।
1: अच्छा जी, पढ़ने में मन लग रहा है?
0: हाँ।
1: चलिए बढ़िया है। और कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: कव्वाली।
1: गाने की बोल बताएंगे कुछ?
0: माँ बाप का दिल न दुखा।
1: अच्छा जी, और गाना सुनवाना भी है किसी को?
0: हाँ,
1: बता दीजिए। ओके, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM। ओके
0: ओके।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: परम आदरणीय श्रोता बंधु चाचा चाची भैया भाभी काका काकी सभी के पैर छू के प्रणाम करतनी। रउरा सभी बनल बनी रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर और रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर कार्यक्रम शुरू होके जा रहल बा छोटे वर्जा भार। रवा सभी के फरमाइश पर रेडियो रिमझिम लेके आ गेल बा भोजपुरी माटी के एक नया सौगात। इस कार्यक्रम में हमने के रवा तक पहुँचे की कोशिश करे सन और कार्यक्रम कैसन बा कैसन लागल जरूर बताई। कैसे नया सौगात बाटे सोटी बिरजा भार कार्यक्रम की और इस कार्यक्रम में हम बानी रवा साथ और दोस्त अमरीश और उम्मीद बा की आपके ये कार्यक्रम बहुत पसंद आई। तो चलिए बता देता नहीं कार्यक्रम में छोटी बिरजा भार में स्वर बांटे मास्टर इस्माइल के और खुश मोहम्मद जी के। तो चलिए लफ्ट उठावल जाओ छोटी बिरजा भार के।
1: अब बिरजा भार वो जो आसन लगा के बैठल बड़न अब देखिए वहां के अब सखी लो आओ तलो कौने तरह से ए सखी
2: काए सखी
1: ए ओ कारबा आज चले के हमनी के फुलवारी देखल जा इतना बढ़िया बढ़िया फूल फुलाइल बहो
2: चले के
1: चला अरे चल सखी

0: फसरे
1: आ तू कहां रहलू हत तारा के जोनी हत त ना मिलु हत का करिस
0: पाप रे बाप हम कह रहली अपने मरदे के मनावे खातिर
1: मरदे के अरे बाप रे बाप सुन तरु हो ए बेरले है बूढ़ भइल भी अपने मरदे के मनावतिया
0: बाके हमार मरद बड़ी बिगड़ल पाट
1: का बिगड़ल बड़े हो
0: बाप रे बाप कहत का
1: हां
0: कहो
1: हां
0: कहना हमरा लगवा सबे से रहे लकरे भाग तारा कुछ बुझाता हमार दिन नियरा गोइल बाटे
1: आही बाल
0: ए हम कैसा जोगी लोग को तारे है दाता
1: आई बे तोरो नजर पर गेल का हो जोगी के ऊपर अरे बाप रे बाप धतन कितना सुबह जोगी बड़े हो दादा चल तनी आज उनकरा के आ उनके ऊपर चढ़ जाए ऐसन सुंदर बण
0: चुप रहा लो हमरा पहले जगावा ता
1: जा जगावा आसन लगा ले बने तो
0: ए जोगी बाबा जोगी बाबा हो हमरा सब बियाह करब नहीं आवा है मैं कंठे तनी डूबा लो नहीं डूबे अरे सुन बात सुन बा ए दे गाव रे सोख हमार आवाज में गड़बड़ा गोइन नु बा
2: बाबा
3: का
2: अरे

0: अब देखा जा, अब यहाँ से हम जाता नहीं। कब तल से ब्याह ना करम
1: तो हमरा से कहलिए बाबा
0: तोहरों से ब्याह ना करम। अब देख अब यहाँ से जाता नहीं हम। अब देखी आबू जी से जोगी जा रहा बने, जब ही जाए के रास्ता में बड़न तब तक रत्नावटी रानी जन बा तुम जादू से मार के इनकरा के सुगा बना दलस। अब सुगा बन गए। अब देखिए हिजू के कहानी है हिजू। अब उन्हें हेमंती जन बा तन पलंग पर सुतली बा सपना देखतिया कौन तरह से
2: कौन तरह से

0: हाँ भौजू, अपने मामी के जगाओ तड़ी। अब भौ आइले, उनका मामी उठा तड़ी, का कह तड़ी। अरे
1: हेमंती,
0: मामी
1: तू कैसे चली आई हो?
0: देखा मामी चलेली, हमार पति देव गई बने। ओ जुम्बार के सुगा बना दली सर रतनपुर शहर में, जो रानी रत्नाव टूबिया तो हमरे पति के सुगा बना दले भैया मार के।
1: हेमंती
0: हाँ मामी,
1: सुगा बना दले भैया
0: हाँ
1: बिरजा भार के
0: हाँ
1: की कहला उजा जाए के हो रतनपुर शहर में रानी रत्नवंती के लगे, वो तो बहुत जादू जाने ले हो है। कोनो बात नहीं के, जब तू हमरे लगे आ गयलू, हमार नाव सतीश सावन सावरी हुए,

0: चला मामी देखा हमनी के आ गई कहाँ रतनपुर शहर में आ गई
1: रतनपुर शहर है
0: यह रतनपुर शहर है
1: लेकिन हम कहा देखा नहीं हो
0: हाँ
1: कहा देखता नहीं कि चारों ओर से कटवासी बा के मा है हमार भगना गई हुई है
0: मामी देखा यह रास्ता पकड़ा जल्दी ले चलो
1: चलो हम चलता नहीं हो जा
0: चलो
1: रोक दे जा जादू के रंग
0: रोक दी
1: मारू और पता लगावा ये बागीचा में कि केने बिरजा भार बने केने रानी रतवंती दी
0: मामी देखा यह रानी है एकरा से जम के लड़ाई करे मामी जब तक ऐसा लड़ाई ना करू तई बुझतिया जे हमरा से बड़ा शक्ति हीन बाड़ी मामी चले के से सामना सामनी करा
1: चलो
2: रे हाँ
1: रतवंती ते चिन्हत ने किस हमरा के
3: हम का चिन्हत नहीं तरह के
1: ते चिन्हते ने किसे
3: तू के हाँ के हमरा से जादू में बीस निकल जाए तब
1: ना हमरे नाल सती सारू हवे
3: ओसे कहो
1: ते हमरा के जानत ने किस
3: ना
1: डेढ़ हछरिया है इस तोरा के हम ही हो जानता नहीं
3: हाँ ऐसे मार के तेरे भगना के सूगा बना देने वाली अब तेरे लग पावर हो के ते एकरा के अपन आदमी बना ला
1: पावर तो हमारे लग उतना बा कि तोहनियों के समझ जाए सन आ तोरे पूरे राज भर के लोग समझ जाए लेकिन सुन ले हम तोरा सब कहता नहीं कि हमरे बिरजा भार के तनी के जौन सुगा बना ले बाड़ू सन उनकरा के अपो से आदमी बना के हमरे लगे भेजा दस
0: मामी अगर इतना ही शक्तिशाली भैया एक के जादू चला दो कि बही के कागरी चल जा
1: रे ना मन बे
3: ना मानो
1: ना मन बे
3: ना
1: तले देख हम तोरा ऊपर जादू अब चला होता नहीं
3: चला के देख लो
1: एक दो और ये
0: मामी ये तो बह गई अब हमारे पति के देखा उह सुगा बन के पेड़ पर टाए टाए कर तड़े उनकरा के जल्दी आदमी बना दो
1: एक काम कर
0: हाँ
1: जल्दी ते ओजा जो ओजा जल्दी जो
2: सुगा पेड़ पर
1: सुगा जब बन गेल बने हम ओजा आदमी बना देता नी आ ओजा से तुरते उनकर के धौली है चल। लेके चले है
0: चल अरे मामी अरे तू तो आ गई हा हेकरा के कहे के लेके आइलू हा मामी हम तो एकर सूरत नहीं देखल चाहत
1: यही से तो हम कहत रहनी हा कि रे हेमंती ते हमरा के मत लिया के चल बाबू ई नेकी के जमाना नहीं खे बिरजा भार चलो अब से तू वापस चल चलो अब तहार ठीक समय बा चलो बाबू हमार चलो
3: अरे काहे के लियो ले हो आइलू हमरे अरे बियाही आके

0: जारी चैन पट्टी गोपालगंज
1: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-7-14-86-164।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
11: All right.

0: बचाव एवं राहत से जुड़े संसाधनों को पहले से तैयार किया जा रहा है। लोगों से सतर्क रहने, प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक निर्देशों का पालन करने और किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेपाल में मूसलाधार बारिश और ग्लेशियर फटने से बिहार में उत्पन्न बाढ़ के खतरे को देखते हुए आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री शाह ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को तैनात किया जा रहा है। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में NDRF की टीम लोगों को सहयोग कर रही है।
1: बारिश के मौसम के पूर्व ही माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी तैयारी कर ली गई है और जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में कहीं भी बाढ़ की स्थिति बनी है पूर्ण रूप से उसको सहयोग किया जाएगा। सभी क्षेत्रों में NDRF की टीम तैयार है।
0: आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ से बचाव के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राशन और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
2: बिल्कुल, हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में तैयारी किए हुए हैं, चाहे सूखा राशन हो, प्लोथिन शीट हो और पशु चारा हो, दवाई हो, जो भी सामुदायिक किचन, सामुदायिक स्वास्थ्य, सारी व्यवस्था मुकम्मल तैयारी है। बाढ़ की सारी तैयारी पूरी है।
0: भागलपुर जिले के नवगछिया स्थित राघोपुर में जल संसाधन विभाग की एक नाव पलटने से 21 मजदूर तेज जल प्रवाह के चपेट में आकर बह गए। SDRF की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 मजदूरों को बचा लिया है। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने बताया कि लापता दो मजदूरों की तलाश जारी है।
3: नाव पर 21 लोग सवार थे जिसमें से 19 लोगों को SDRF की टीम जो स्थान पर ही नियुक्त थी उसने निकाल लिया है सक्सेसफुली। दो लोग अभी मिसिंग हैं जिनकी खोज SDRF की टीम के द्वारा की जा रही है। जिसमें पूर्व में भी जो निर्देश दिए गए थे उनका कहीं ना कहीं चूक हुई है लाइफ जैकेट पहनाने में, तो उसमें जो संबंधित लोग हैं, जो वेंडर्स हैं, उन पर FIR भी की जाएगी।
0: नेपाल के रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद और जानकारी के लिए इमरजेंसी नंबर 9851316807 और 9709107500 जारी किया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय कुमार झा ने फरक्का संधि पर फिर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे राज्य को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। श्री झा ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जदयू ने केंद्र सरकार से इस पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है।
4: कौन दस्तखत किया, कौन था उस समय मुख्यमंत्री बिहार का, केंद्र में किसकी सरकार थी उस समय, कौन थे यहाँ पर जब ये ट्रीटी हो रहा था। नीतीश जी तो शुरू से बोल रहे हैं इस चीज को। हम लोग भारत सरकार से यही अपील किए हैं, JDU एज ए पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, कि भाई ये बिहार के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है ये, और जब ये ट्रीटी या तो रिन्यू नहीं हो, और अगर कोई आपको अदरवाइज कोई डिप्लोमेटिक बात है, तो बिहार का जो पानी का जरूरत है उसके इशू को एड्रेस करके ही कोई बात हो।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम बिहार सहित देश भर के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। यह खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयंसेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। प्रदेश की बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए आज 3 नई पहल की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के ज्ञान भवन से पुलिस दीदी योजना के तहत 4,700 महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटर वितरित किया। इसका उद्देश्य स्कूल कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य की बेटियां समृद्ध बिहार की प्रतीक बन रही हैं।
1: कि लगभग 2700 स्कूटी पूरे बिहार में स्कूटर के तौर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और लगभग 2000 से अधिक मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य है बिहार के लोगों की सुरक्षा करना, बिहार के महिलाओं की सुरक्षा करना। और विशेष तौर पर यह अभियान चलाया जा रहा है कि पुलिस दीदी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या अन्य संस्थान हो, वहां पर प्रतिनियुक्त रहे और कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसको सुनिश्चित करने का काम हमारी पुलिस दीदी करेंगी।
0: पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि छात्रों और महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पुलिस कर्मियों को स्कूटर का वितरण किया गया है।
2: महिलाओं की जो सुरक्षा है वो बड़ी महती जिम्मेवारी हम लोगों की है, तो महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन सबों को स्कूटी प्रदान किया गया है पेट्रोलिंग के लिए। ये ज्यादातर जो हमारे विद्यालय हैं, हमारे महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय का कैंपस है जहां पर हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए जाती हैं, वहां पर फोकस रहेगा और आसपास के इलाकों में भी फोकस रहेगा।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बालिका PhD फेलोशिप की भी शुरुआत की। इसके तहत लगभग 1000 छात्राओं को 4 वर्षों तक हर महीने 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत बेटियों को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए 50,000 से 2,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 28 अगस्त की रात 10 बजे तक निगम की सभी श्रेणियों की लगभग 1,075 बसों में महिलाएं बिना टिकट यात्रा कर सकेंगी। इनमें AC, नॉन AC, डीलक्स, PM, ई बस और PPP मोड पर संचालित बसें शामिल हैं। महिलाएं अंतर जिला और अंतर्राज्यीय मार्गों पर भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि चीनी के दामों में वृद्धि पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। श्री पासवान ने आज पटना में कहा कि सरकार हर स्तर से इसमें धांधली और जमाखोरी की जांच कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया।
3: जिस तरीके से चीनी के दामों में वृद्धि देखने को मिली है, कई बार आशंकाएं उठती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोई धांधली हो रही है, कोई होर्डिंग हो रही है। सरकार ने हर स्तर पर अपनी तरफ से इसमें जांच कराई जा रही है। विपक्ष कई बार भ्रमित करने का भी प्रयास करता है इथेनॉल को लेकर। मैं इतना मानता हूं कि एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द चीनी प्याज दोनों के दामों को नियंत्रित कर लिया जाएगा।
0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने आज सीतामढ़ी सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई खामियां पाई गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल में गड़बड़ी पर जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलाद उल नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरत का आयोजन किया गया है। मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में मूसलाधार बारिश और ग्लेशियर फटने से बिहार में बाढ़ का खतरा। गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले को अलर्ट पर रखा गया। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर पटना में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस दीदी योजना के तहत 4,700 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी का वितरण किया गया। स्कूल कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710309 या 97665750।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ किससे इलाज कराऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: 90.4 फ्रीक्वेंसी पर
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: ऑलराइट।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
5: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: राधा, तुमने अपनी चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
0: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
10: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रशासनिक तकनीकी पुस्तकालय, प्रणाली विश्लेषक, निर्माण विभाग, राजभाषा एवं खेल संवर्ग के पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.iitbhu.ac.in तथा iitbhu.ac.in/recruitment। नव बंगलुरु पत्तन प्राधिकरण इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उप मुख्य अभियंता सिविल, वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.newmangaloreport.gov.in। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षणोत्तर पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की विस्तृत जानकारी और शर्तों के लिए देखिए वेबसाइट www.hnbgu.ac.in। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट, प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर, प्रोजेक्ट क्लर्क ए तथा प्रोजेक्ट वर्क असिस्टेंट। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.tifr.res.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलागिरी आंध्र प्रदेश आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। नैदानिक मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा भौतिक विज्ञानी, नाभिकीय चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद, वरिष्ठ चिकित्सा भौतिक विज्ञानी तथा परफ्यूजनिस्ट। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.aimsmangalagiri.edu.in। सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान, पीटीआई सह मैट्रन, बैंड मास्टर संगीत शिक्षक तथा वार्ड बॉय। आवेदन पत्र, भर्ती प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.sainikschoolambikapur.org.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट को आवश्यकता है चिकित्सा अधीक्षक, अधीक्षण अभियंता, रजिस्ट्रार, कार्यकारी अभियंता सिविल, कार्यकारी अभियंता विद्युत और वरिष्ठ लेखा अधिकारी। सभी पदों पर एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत विज्ञापन, पात्रता मानदंड और आवश्यक जानकारी के लिए आप देखिए संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.aimsrajkot.edu.in। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dtu.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
11: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
14: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
13: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
15: सुनिए सुनिए सुनिए,
16: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
15: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
16: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
15: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
17: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
18: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
19: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
20: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
21: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
20: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
21: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
22: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
23: भरोसे वाले से लेंगे,
22: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
23: और कीमत भी।
22: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
24: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
22: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
24: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
25: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
24: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
21: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
24: कॉल करें 85070-32042 पे।
26: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
27: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
26: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
27: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
24: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
27: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
24: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
27: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
24: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
28: प्रसाद क्लिनिक,
29: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
28: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
29: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
30: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
31: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
24: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
32: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
24: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
33: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779091075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण

0: गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
3: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
1: इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी, केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
4: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी कि ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
5: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
6: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोरदोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
1: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
6: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से हुई भारी तबाही, गोपालगंज में प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। सिंहासनी महोत्सव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, शांतिपूर्ण तरीके से ईद मिलादुल नबी का त्योहार हुआ समाप्त। महिला की हुई संदिग्ध परिस्थिति में मौत, दो लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने गंडक नदी के किनारे क्षेत्रों का किया दौरा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से नेपाल में भारी तबाही हुई है और नेपाल में बाढ़ की स्थिति के बाद अब गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इसको लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने इसको लेकर आपात बैठक करते हुए तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने लोगों को घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन के अनुसार जरूरत पड़ने पर निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह भी दी जा रही है। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। आज गोपालगंज के अंचलाधिकारी और सिधवलिया, बैकुंठपुर तथा कुचायकोट क्षेत्र के भी अधिकारियों ने नदी के निचले इलाके में रहने वाले लोगों से अपील की। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई, साथ ही लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की भी अपील की जा रही है। माइकिंग के माध्यम से जिला प्रशासन ने निचले इलाके के लोगों को अलर्ट किया है। आज इसको लेकर जिलाधिकारी समीर सौरभ से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
12: आज जो है सुबह 9 बजे तिब्बत के क्षेत्र में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था, जिसके कारण पानी बहुत ज़्यादा संख्या में नेपाल की तरफ बढ़ा है और वहाँ से वो भारत की तरफ आ रहा है। तो वो जो है अभी पानी का जो गश है वो नारायणी नदी में है और इवेंचुअली वो हमारे गंडक नदी में भी आएगा। लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये जो पानी का फ्लो है हम लोगों का जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से ज़्यादा 330,000 क्यूसेक तक जाएगा और उसमें जो कुछ निचले इलाकों में हो सकता है पानी थोड़ी देर के लिए आए फिर वो निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोगों ने सभी जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं सबको मोबिलाइज कर दिया है। सब लोग निचले इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब अगर पानी बढ़ता है तो वो लोग जो ऊंचे वाले इलाके में आ जाएंगे अपने, और जैसे ही पानी निकल जाएगा फिर आगे वो लोग वापस जा सकते हैं। हम लोग जो अभी नाव का परिचालन भी हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं और सभी लोगों से यही आपके माध्यम से अनुरोध है कि अनावश्यक नदी वाले क्षेत्र में निचले इलाकों में ना जाएं, आप लोग ऊंचे वाले इलाके में रहें। पानी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन सिंस ऊपर से नेपाल के क्षेत्र से जब पानी आ रहा है तो हम लोग इसको लाइटली नहीं ले रहे हैं और हम लोग बहुत सीरियसली इसको लेते हुए सभी पदाधिकारी को भी हम लोगों ने ऐसे ही ब्रीफ किया और वो लोग फील्ड में रहेंगे सब लोग। और किसी भी तरीके का अगर पानी बढ़ता है उसे किसी भी तरीके की समस्या होती है उसका निपटान हम लोग करेंगे। यहाँ हमारा जिला आपदा केंद्र का कंट्रोल रूम चलता है, वही कंट्रोल रूम एक्टिवेटेड है और उसी के माध्यम से हम लोग पूरे जिले की जानकारी ले रहे हैं।
11: बैकुंठपुर प्रखंड के प्रसिद्ध सिंहासनी धाम में सिंहासनी महोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। कला सांस्कृतिक विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बाबा धनेश्वर महादेव सिंहासनी महोत्सव का भव्य एवं रंगारंग आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार के मंत्री और विजय कुमार सिन्हा तथा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और पूर्व मंत्री जनक राम सहित तमाम लोगों ने दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महोत्सव में अति विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। इस दौरान कई ख्याति प्राप्त कलाकारों ने इस मंच से अपने कला का प्रदर्शन कर वहां उपस्थित दर्शकों का मनोरंजन किया। इसको लेकर कई तरीके की और खबरें भी चली। डिजिटल मीडिया के लोगों को वहां बैठने की जगह नहीं मिली, जिसके वजह से डिजिटल मीडिया के लोगों ने कार्यक्रम का बहिष्कार भी करने का ऐलान किया। तो वहीं कुछ स्थानीय कलाकारों ने भी इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय कलाकारों को मौका नहीं दिया गया। हालांकि सबके बावजूद कार्यक्रम काफी सफल रहा और भारी संख्या में दर्शकों ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। आज पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से ईद मिलादुल नबी पर्व का समापन हुआ। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारी तथा कर्मी लगातार पूरे क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करते रहे। जगह जगह जुलूस और अन्य कार्यक्रमों के पास भी दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल को तैनात किया गया था। लोगों ने काफी उत्साह, जोश और आस्था के साथ इस त्योहार को मनाया। गोपालगंज में भी पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार को संपन्न कराया गया। जुलूस के दौरान निर्धारित मार्गों, चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पर्याप्त मात्रा में तैनात रही। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को अपने अपने ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया था। अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भी पुलिस बल को तैनात किया गया था। पुलिस ने जनता से भी निवेदन किया था कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाएं और जिला प्रशासन की सक्रियता और सामाजिक सद्भावना के वजह से इस त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त किया गया। इस दौरान लोगों ने जगह जगह आपसी भाईचारे के साथ त्योहार को मनाया, जिसके वजह से कहीं से भी किसी तरह की कोई विवाद की खबरें नहीं आई। माझा थाना क्षेत्र के श्यामपुर भैंसही में एक महिला की मौत हो गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई और आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल की टीम ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक जांच पड़ताल किया। मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतिका के परिजनों द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर पुलिस ने इस मामले में कांड दर्ज करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार एक आरोपी राजकुमार यादव का पहले से भी कई आपराधिक इतिहास है। माझा थाना में इसके विरुद्ध पहले से भी लगभग आधा दर्जन मामले दर्ज हैं और इन सभी मामलों में पुलिस अब इस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। मृत महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतिका से दहेज के रूप में मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी और दहेज की मांग को लेकर ही उसे प्रताड़ित किया जाता था। मृतिका का पति जब भी घर आता था तो उसके साथ मारपीट करता था। इस संबंध में पति सहित अन्य ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज प्रताड़ना एवं हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड के दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक सुदामा यादव पिता मुखलाल चौधरी और दूसरे राजकुमार यादव पिता सुदामा यादव, यानी दोनों बाप बेटे हैं। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब पुलिस ने आज दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गंडक नदी के बढ़ते हुए जलस्तर को लेकर जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज मंगलपुर पुल और आसपास के संबंधित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान नदी के जलस्तर की स्थिति, आसपास के क्षेत्रों में संभावित प्रभाव तथा आम लोगों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और गंडक नदी के जलस्तर के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और निचले तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। साथ ही संभावित स्थिति को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कही गई, ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के बाद लोगों से भी अपील किया है। उन्होंने कहा कि निचले एवं संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर स्थानांतरित होने का अनुरोध किया गया। लोगों से बच्चों, बुजुर्गों एवं अन्य संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि प्रशासन लगातार स्थिति पर निगरानी रख रहा है। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न होने पर प्रशासन के द्वारा आवश्यकता अनुसार हर संभव सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। आम जनता से कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, लोग सतर्क रहें और प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। डीएम ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अनावश्यक रूप से नदी के किनारे या जल भराव वाले क्षेत्रों में नहीं जाएं। किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेने की अपील की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी सहित तमाम संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। कटिहार थाना क्षेत्र के एक गांव से 17 वर्षीय किशोरी संदिग्ध स्थिति में घर से गायब हो गई है। उसकी मां ने एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। किशोरी 8 अगस्त को गायब हो गई थी और अब तक उसका कहीं पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस मामले में आवेदन मिलने के बाद अब आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। माझा थाना क्षेत्र के छमही गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया। NH 27 पर हुए एक हादसे में मां और बेटा दोनों घायल हो गए हैं। इसमें 55 वर्षीय चांद तारा खातून और उनका 24 वर्षीय पुत्र जाहिद बाइक से शहर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया जिसमें दोनों जख्मी हैं। दोनों का इलाज चल रहा है। कुचायकोट थाना क्षेत्र में सिरिसिया गांव के पास NH 27 पर एक मक्का लदे हुए ट्रक के ठोकर से साइकिल सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक का नाम सचितानंद यादव है और यह विशंभरपुर थाना क्षेत्र के काला मटिहनिया गांव के अनुवत यादव के 38 वर्षीय पुत्र थे। घटना के बाद इनके परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया और मामले की जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि आज मृतक का अंतिम संस्कार हुआ, इस दौरान उनके परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। कटिया थाना क्षेत्र में जमीन का बैनामा कराने के नाम पर पैसों की ठगी करने के मामले में प्राथमिकी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जमीन का बैनामा कराने के नाम पर पैसों की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस आरोपी को ढूंढ रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त चुनू शाह को गिरफ्तार किया, जो सोहनरिया थाना कटिया का निवासी बताया जा रहा है। गिरफ्तार करने के बाद आज इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साइबर थाना की पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसी दौरान साइबर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर हथुआ थाना क्षेत्र के इम्पीरियल पब्लिक स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक साइबर एवं साइबर थाना के पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। स्कूली बच्चों को ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, फर्जी लिंक, OTP शेयरिंग एवं बैंकिंग धोखाधड़ी सहित विभिन्न साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से हुई भारी तबाही, गोपालगंज में प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। सिंहासिनी महोत्सव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शांतिपूर्ण तरीके से ईद मिलादुल नबी का त्योहार हुआ समाप्त। महिला की हुई संदिग्ध परिस्थिति में मौत, दो लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने गंडक नदी के किनारे क्षेत्रों का किया दौरा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
14: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
13: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
15: सुनिए,
16: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
15: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
16: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
15: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने।

0: खेले हम। अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलवासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्वेश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Neena Orakel. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River this morning from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, Mr. Modi said, "India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal." Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, and +977 981 032 6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in six districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation. Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood situation in neighbouring country. Mr. Shah assured the state government of providing all possible assistance to deal with the emerging situation. In Uttar Pradesh as well, vigilance has been intensified in the districts of Maharajganj and Kushinagar near the Nepal border. Chief Minister Yogi Adityanath has directed the local administration to take all necessary precautionary measures and maintain strict vigil. NDRF Commandant Gyaneshwar Singh said the National Disaster Response Force, NDRF, has deployed 9 teams in Bihar and 11 teams in Uttar Pradesh to deal with the emerging situation following the flash floods in Nepal. Union Minister of Railways Ashwini Vaishnav has said that Indian Railways is moving towards four-laning the entire high-density railway routes. In a social media post, Mr. Vaishnav said there are 7 high-density routes spread over nearly 11,000 kilometres and carry a major share of the country's rail traffic. The 7 high-density routes are Delhi-Howrah, Howrah-Chennai, Chennai-Mumbai, Mumbai-Delhi, Delhi-Chennai-Mumbai-Howrah and Delhi-Guwahati. The Indian Medical Association, IMA, has urged people to remain vigilant amid a seasonal rise in influenza AH1N1 cases, saying that the majority of infections are mild and self-limiting and there is no cause for panic. The IMA has advised people not to take antibiotics over-the-counter for flu symptoms, stressing that H1N1 is a viral infection and antibiotics do not kill viruses. The Delhi government today handed over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana. Out of this, 2,500 letters were given at a formal ceremony. And that is the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: क्या बोले थे? बुलाती है मगर जाने का नहीं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: का हुआ पुछू बेबी?
2: बेबी
1: वो का कोई ले बड़ू बताइबू की बीपी बढ़ाइबू?
2: हाँ तो बर्दाश्त कर ले बना।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: थैंक यू जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ गोपालगंज से।
1: कैसे हैं आप?
2: सब ठीक है जी, आप लोग कैसे हैं?
1: हम सब भी ठीक हैं
2: जी, हम लोग भी अच्छा ही है। थोड़ा धूप धूप निकला है और हमको गाना सुनना है।
1: बता दीजिए।
2: ओ बाबुल प्यारे, ये गाना है ओ बाबुल प्यारे हुए पायल की सरगम, यही गाना सुनना है।
1: और गाना सुनाना भी है किसी को?
2: जी, जितने भी अपना दोस्त साथी है लो रेडियो रिंगिंग का, उसको अपने मित्र दोस्त साथी लोगों को सुनाना है।
1: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
2: जी जी।

0: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी मैं पप्पू ठाकुर बढ़िया बाजार खटिया गोपाल करते हुए।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है जी। आप बताइए कौन बोल रहे हैं? भारती में आज तो मौसम अच्छा है मैम।
0: हाँ, आज मौसम ठीक है।
1: थोड़ी
0: तो क्या हो रहा है अभी?
1: क्या हो रहा है अभी? तो हम देवरिया में है, गाँव में नहीं है, देवरिया आए हुए हैं। आज तो पहली बार में ही फोन लग गया हमारा,
0: उसे
1: कॉल कर देते हैं, फरमाइश कर ही लेते हैं इसके आने का।
0: बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है?
1: गाने का बोल है पल पल दिल के पास, रविंद्र का गाना है प्लेन ऑफ ब्लैक मेल।
0: तो गाना सुनाना है?
1: हाँ हाँ, जितने भी हमारे श्रोता गण है सबके लिए है और परिवार के सभी सदस्यों के लिए है।
0: जी जी, फिर
1: जरूर सुनाइएगा। कितना बजे तक आ जाएगा गाना?
0: आज शाम को आ जाएगा।
1: आ जाएगा, चलिए अच्छा है, सुनवा दीजिएगा।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
7: रचना बोलते हैं मैम।
6: क्या हाल बाजी? हमने हो गए ठीक बा। निशान
7: नाश्ता कम हो गए मैम?
6: हाँ, हमने की नाश्ता हो गई बा। रोरा सब ठीक हो गए बा?
7: हाँ, हमने
6: क्या होता अभी
7: बहुत लॉन्ग इंतजार होता है सब बात हुई।
6: अच्छा चोरा, और इंतजार के घड़ी खत्म हो गए।
7: मनरमा मैम कहाँ बनी?
6: ठीक बानी।
7: अच्छा ठीक बानी मैम आके। सुनाई
6: और सब तो ठीक बाबे?
7: तो ठीक बा।
6: तो बता दी आज कौन सा गाना सुनेगा?
7: आज गाना सुनेगा हम अपना जान से ज्यादा माननी अपना भाई के।
6: अच्छा, और ये गाना सुना हूँ तो बा?
7: हाँ, रौरा सुने हम सब तो सुने जितने ऑलरेडी सुनाता।
6: चलिए ठीक बाबा, गाना प्ले करता नहीं सुनाते रहेंगे रेडियो 90.4 FM।
7: ठीक।

0: जी
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
0: जी। शुक्रिया।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है, अच्छा है।
1: नाश्ता पानी हो गया है आपको?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: अभी क्या हो रहा है?
0: अभी बस खेत आए हैं अपने काम में।
1: खेती किए हैं?
0: धान है अभी तो।
1: अच्छा धान है
0: जी।
1: चलिए बढ़िया है। तो फसल कैसी है अभी?
0: अभी बढ़िया है, निंदाई गुड़ाई काम चल रहा है।
1: अच्छा जी, चलिए सब कर चुकी है। गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, फिल्म है शोर। जी।
1: और गाना सुनाना है?
0: जी मुकेश शर्मा जी है, श्रीपाल गोयल जी है, लोकेंद्र वर्मा जी है, दिलीप बहुरिया जी है, और सभी का और आप सबके लिए भी।
1: ओके जी, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
0: धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, नमस्ते।
6: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 में।
5: मैं गोपाल ओझा ग्राम ककवासा जिला गुना से बोल रहा हूँ।
6: हाँ जी, कैसे हैं आप?
5: बढ़िया है। अच्छी है।
6: क्या हो रहा है अभी?
5: कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो घर पर ही है, कार्यक्रम चल रहा है आपके।
6: तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
5: वो सुनना है दिल तुम्हारा फिल्म को, कसम खा के कहो मुस्कुरा के कहो, कुमार पान वाल गाएंगे।
6: और गाना सुनाना भी है?
5: हाँ, हमारे दोस्त सुनील साहू जी है, मकसद ज्योति साहू जी है, मांगीलाल धसाल जी है, उनके लिए और आपके लिए।
6: जी जी, और सब ठीक है ना?
5: ठीक है, आप कैसी हो?
6: हम भी ठीक है।
5: अच्छा है,
6: गाना प्ले करते हैं।
5: जी करिए,
6: सुनते रहिए 90.4 FM।

0: मनोरमा जी या भारती जी?
1: आप भी बता दीजिए।
0: हमको तो लग रहा मनोरमा जी है।
1: नहीं, मैं भारती हूँ।
0: मेरा से मिस्टेक हो गया ना?
1: नहीं, होता है, आवाज कभी कभी मैच जाता है ना।
0: क्या और कुछ बताइए?
1: और सब ठीक है, आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: हम लोग तो बढ़िया है। आपको कब से एक बार फोन लगाया था तो अभी लगा ना तो आवाज़ नहीं आ रहा था, फिर अभी फोन किए तो लग गया। मौसम तो ठीक ठाक है ना उधर?
1: हाँ, मौसम ठीक है अभी।
0: कहाँ निकल गई? नहीं आई है
1: ये तो बात मुझे नहीं मालूम है, और ये सारी बातें तो हमारी मैनेजमेंट ही आपको बताएगी।
0: नहीं हो रहती तो थोड़ा मन साइंड होता था, सब लोग साफ है और भारती जी भी थे तो वो भी चल गई बिना बताए ही किसी को।
1: नहीं
0: वो दिव्या जी
1: अभी
0: चल गई, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। कभी आप भी चल जाएगा, कोई को पता नहीं चलेगा।
1: यहाँ पे तो सब आते जाते रहते हैं।
0: आते जाते रहता है। हाँ, हम लोग तो मान लीजिए पुराना लिस्टनर है, 14 साल हो गया। अब वही सोच रहे हैं हम लोग कि हम लोग भी चल जाएगा।
1: नहीं ऐसा नहीं, आप लोग हैं तो अच्छा लगता है।
0: तो जब मान लीजिए कि हम लोग का फेवरेट जो है वो लोग सब चल जा रहा है, वही थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन क्या किया। तो अभी तो लाइव चल रहा है कि रिकॉर्डिंग चल रहा है?
1: अभी तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, लाइव तो 12 बजे से शुरू होता है ना।
0: आज तो भोजपुरी एक्सप्रेस नहीं चलेगा, चलेगा?
1: कल चला था ना, कल संडे था।
0: कल तो मैं मैसेज किया ही था। तो आज कौन सा गाना सुना दीजिएगा?
1: हाँ बताइए।
0: हम तो भाई फेवरेट नीलकमल सिंह का है।
1: उन्हीं का सुना देंगे, बताइए ना।
0: नीलकमल सिंह का टेड सॉन्ग कोई भी चला दीजिएगा।
1: नीलकमल का कोई भी टेड सॉन्ग गाना सुनाना भी है?
0: हाँ, वो हमारा दुलारुआ हरेंद्र जी है। तो पहचानते हैं उनको। तो वही बोल रहे हैं कि जा जा पलट के देखा ना, कौन कौन है जाओ पलट के देखा ना, नीलकमल सिंह का है ना। वही वाला बजा दीजिएगा। और आप है, डेडिकेट आप है, हम है, पूरा फैमिली है, सब है
1: जी। गाना करेंगे, सुनते रहिए रेडियो झिमझिम 90.4 FM।
0: ये 5 बजे चलेगा ना? आज चलेगा ये कल?
1: हाँ जी, आज या फिर कल, मतलब दोनों दिन में चल ही जाएगा।
0: चलिए ठीक है,
1: ठीक है फिर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: गुड मॉर्निंग दीदी।
3: गुड मॉर्निंग,
2: क्या हाल है?
3: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
2: मेरा भी ठीक है।
3: क्या हुआ?
2: अभी तो फोन लगा रहे सर, उस समय लगा रहे, मोबाइल में बैलेंस ही नहीं था।
3: लेट से रिचार्ज हुआ है।
2: आज चलाखी किए हैं, उसीलिए लगा है फोन पे, नहीं लगता अभी। कैसा बतिया करेंगे, जब तुरंत किए तो रिंग करने लगा। और सब बताइए?
3: और सब ठीक है।
2: पूजा जो है कि नहीं, लास्ट हमारी है तो
3: पूजा
2: हुआ
3: है, करके आया। हेलो,
2: और कल करिश्मा हुआ, गुस्सा है गई थी,
3: काफी ने डिलीट कर दिए सारा,
2: तो वो खिसिया गई थी, गुस्सा हो गई थी, बोले कि छोड़ दे रहे हैं बजेगा, तो
3: बोले नहीं कि हम बजाने जा रहे हैं, तब तक पूरा
2: नहीं, तो बोल रहे थे कि आप ही बताइए, 2 बजे के मैसेज किया, 2:30 बजे के, और 1 घंटा आधा घंटा वेट करके बजाना चाहिए, तो क्या 2-2 घंटे वेट कर रहे हैं,
3: क्या ही कीजिएगा, इतना सारा ये करने वाले हैं लोग, और मैसेज
2: कहना सुनना है। अंकुश राजा के आवाज में रक्षा बंधन सॉन्ग एक गाना बता दीजिए, बहनी तो कब न भूलाए,
3: गाना
2: सुना के बाद आपको मनोरमा दीदी को, सोनी दीदी को, डायरेक्टर साहब को, पूरा रेडियो रिमझिम को सुनाना है, करिश्मा जी को सुनाना है।
3: तो गाना प्ले करते हैं
2: जी। आज तो 1 हफ्ते मेरा कम्प्लीट हुआ है, तो बजेगा ना गाना मेरा? ठीक है, चलिए
3: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।

0: स्वागत है आपका रेडियो रेंज
1: भारती जी सर नाम।
0: हेलो
1: हेलो ठीक है। उस समय से इंतजार करते कर फोन भी लगा तो क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, बस यही कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बैठ के
1: दोनों आदमी। मिली जुली सरकार चल रहा है?
0: नहीं अभी तो मैं कर रही हूँ, इसके बाद ये करेंगी।
1: चलिए आज तो बात उनसे करना था लेकिन चलिए।
0: हेलो
1: हेलो
0: जी
1: कौन जी? नमस्ते
0: नमस्ते।
1: चलिए ठीक है
0: जी जी।
1: और सब सुनाइए?
0: और सब बढ़िया। खाना वाना हो गया आपका?
1: खाना हम कॉल करके ही खाना खाते हैं। 12 बजे कॉल हुए, 1 बजे कॉल हुए, कॉल करेंगे इसके बाद खाना खाते हैं। आज के दिन आज छुट्टी रहती है ना हमारी?
0: अच्छा
1: आज हमारी छुट्टी रहती है, आज फ्री टाइम रहते हैं, इसलिए मैं अभी फोन लगाया, इससे पहले नहीं लगाया था, लग भी गया। तो आज एक फरमाइश है बताऊं?
0: जी बिल्कुल।
1: खुशबू सिंह की आवाज में है
0: जी।
1: पूछे जानी घूंघटा उठाइए बलम जी, दी ही कुछ और कीना मुंह दिखाइए बलम जी। अगर कहेंगे तो गुनगुना के भी सुना सकते हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: पूछे जानी घूंघटा उठाइए बलम जी, दी ही कुछ और कीना मुंह दिखाइए बलम जी। यही सुना दीजिए।
0: जी जी आप बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन
1: गाते तो है लेकिन आप लोग गाने ही नहीं देते हैं।
0: अच्छा हम लोग गाने नहीं देते
1: तो भारती जी कभी गवाती है नहीं है? नो वो खुद को गाती है ना, हमें गाने देती है।
0: लेकिन हम तो आपको गवाते हैं क्योंकि हम बहुत बार सुने अच्छा लगता है।
1: हाँ तो गवाना भी चाहिए।
0: अच्छा आपकी जब जब रिकॉर्ड कराइएगा ना गा के सुनाइएगा मुझे। ऐसे में ऐसे रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे जब तक आप गाइए।
1: तो करना ही मत। हाँ करना ही मत। चलिए ठीक है ठीक है। तब
0: डेडिकेट
1: आप ही लोगों को रहेगा और जितने हमारे नाम से जानने वाले हैं सबको। मेरा नाम धनेश कुमार मित्रा दिल्ली से।
0: अभी पूछ आपका नाम क्या है?
1: तो मैं बता दिया पहले ही।
0: रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone can be watched the head to get it.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं।

0: नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो केसरी 90.2 FM में।
2: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते,
2: क्या हाल बा?
1: हाल तो ठीक बार हुआ, बताए रहो कैसे बने?
2: हाँ ठीक बनी। खाना वाना हो गल बा?
1: हाँ खाना हो गल बा।
2: कहाँ बन मनोरमा दीदी?
1: बानी होने अपन काम करते नी।
2: अच्छा ठीक है बा। हमी कहते की ना लगी का तुम फोन रिचार्ज खत्म हो गल मोबाइल में।
1: हाँ हाँ रिचार्ज खत्म रहा है, सर से बोल के रिचार्ज करवानी है।
2: रात नहीं है गाना सुनने के बाद बजा दी। नीलकमल की आवाज में बजा दी।
1: गाना के बोल बता दी।
2: रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन याद आवे बहिनी के, रक्षाबंधन के गाना सबसे पहले रहुआ के मनोरमा दीदी के, सोनी दीदी के, जितना सुनते हैं लोग के, गणेश भी सुनी है और हम सुने हैं, मनीष भी सुनी है।
1: ठीक, फिर गाना प्ले करने सुनत रही रेडियो रंजीम 90.2।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
0: विकास कुमार हिंतापुर
1: जी, क्या हालचाल है?
0: आज का हालचाल बहुत खराब है यार।
1: क्या हो गया?
0: आज जैसे वो कंपनी में ड्रिल कर रहे थे, हम ड्रिल मशीन चला रहे थे, वो जो फिक्स वाला ड्रिल में मशीन नहीं होता है, तो हम ड्रिल कर रहे थे, तो दस्ताना जो क्या हुआ कि फंस गया ड्रिल में। मैं तो सोचा कि मेरा उंगली टूट गया, एक बंदे ने आकर के बंद कर दिया।
1: कुछ नहीं ना हुआ?
0: क्या बताएं हम मैडम, आज का जात्रा मालूम ना किसका मुंह देख लिए, सुबह सुबह सकल देख लिए।
1: अच्छा, अब ठीक है ना?
0: हाँ हम ठीक है, अभी दिखाएंगे इसको, शाम को जाएंगे तो डॉक्टर।
1: अच्छा, मुड़ उड़ गया है क्या? उंगली
0: मुड़ा नहीं है, दिक्कत कर रहा है, दर्द कर रहा है।
1: अच्छा, खिंचाव पड़ गया है लग रहा है।
0: हाँ, वो दस्ताने पूरा खींच गया ना।
1: शुक्र मनाइए कि टाइम से कोई आके बंद कर दिया।
0: पासे में था एक मिस्त्री ने बंद कर दिया, वो देख लिया ना कि दस्ताना फंस गया है, उसको बंद कर दिया आकर के मशीन को।
1: थोड़ा ध्यान रखिएगा।
0: आप बताइए आप कैसे हैं मैम?
1: हम सब भी ठीक हैं।
0: अच्छा, और सोनी मैम?
1: सोनी मैम भी ठीक हैं।
0: सोनी मैम से बात नहीं होता है। क्या उनका दूसरा प्रोग्राम चल रहा है क्या?
1: नहीं तो।
0: अच्छा,
1: अभी क्या कर रहे हैं?
0: अभी तो काम वाम हो रहा है, कल निकल जाएंगे घर।
1: सही काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं।
0: जैसे कल निकल जाएंगे अपने गाँव गोपाल में?
1: नहीं, गांव तो निकल जाइएगा, मतलब वो उंगली ये हुआ है, मुड़ा हुआ है, फिर वैसे ही काम कर रहे हैं।
0: नहीं, ऐसे बैठे हैं हम कंपनी में।
1: अच्छा,
0: सुपरवाइजर ने बोल दिया कि बैठे रहो आराम से, शाम को 5:30 बजे चला जाना।
1: अच्छा,
0: मालिक भी बोल दिया आकर के, मालिक भी बोला करके देख लिया ऑफिस में, बोला कि बेटा तू एक काम कर, तू बैठे रह, तू कुछ ना काम करो, तू बैठे रहो, 5:30 बजे तू जा करके दिखा लेना। अच्छा, लंच में चला जा। तो लंच में देखते हैं मैम, लंच में चले जाते हैं, दिखाते हैं।
1: हाँ, लंच में ही चलते
0: हैं। लंच में निकल जाते हैं, दिखा लेते हैं,
1: और दिखा के उनसे सब रेडी करके कल निकल जाइए।
0: हाँ, दवा ववा दे देगा, मलहम वलहम दे देगा, गर्म पट्टी दे देगा, वो सेट हो जाएगा। क्या करिएगा मैम, बहुत जीवन में बहुत पेट के लिए बहुत दुख है ना।
1: जीवन में कष्ट भी है, सुख भी है, दोनों है।
0: हाँ, क्या से क्या करना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ करके 1200 किलोमीटर छोड़ छाड़ के आना पड़ता है। क्या करिएगा,
1: चलिए कोई बात नहीं।
0: चलिए, मेरा भी अंदर शौक है कि एक बार विदेश हम भी चले जाएं, घूम करके आ जाए, बस एक सफर दो सफर घूम करके चले जाएंगे।
1: हाँ, तो शौक है तो पूरा कर ही लेना चाहिए।
0: पासपोर्ट बन गया है, अभी पासपोर्ट को कहीं लगाएंगे, लगा करके दुबई या नहीं तो सऊदीया में जाएंगे।
1: चलिए बढ़िया ही। तो
0: आज तो मैम गमाला पूजा है ना, वो माता जी का।
1: हाँ हाँ,
0: आज मेरे गांव में भी है, मेरी मम्मी बोल रही कि बेटा आज वो माता जी के जा रहे हैं, माता जी के पास आज पूजा है।
1: कढ़ाई चढ़ाने जाते हैं लोग, पूड़ी वगैरह बनता है, वही चढ़ता है।
0: हाँ, पूड़ी वगैरह बनता है, वो सब खीर भी बनता है। वो एक सादा वाला खीर नहीं होता है, वो मिट्टी के बर्तन में बनता है।
1: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है
0: आज हमको? गाना सुनना है वो वाला, दिल की जो मानो तो जग रुक जाए, जग की जो मानो तो जान चल जाए, यही वाली मैडम।
1: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
0: तो पहले आपको सुनवाना है। आज जितना रेडियो रेमियम सुनने वाला है सबको।
1: जी जी, तो रखिए अपना ख्याल रखिएगा।
0: जी बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते टाइम हो गया आपका?
1: हाँ हाँ।
0: अच्छा, चलिए अब एक ही बार बुधवार को बात होगा।
1: हाँ।
0: जब तक मैं घर चला जाऊंगा।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो,
5: नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। हाँ, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत दूर मोबाइल रख के बात कर रहे हैं।
5: नहीं मैम, आप बहुत जा रहे हैं।
4: हेलो
5: जी, मैं बहुत जा रहा है।
4: हाँ अभी आ रहा है।
5: नाश्ता पानी हो गया?
4: नाश्ता पानी हो गया आपका? हो गया है? क्योंकि रिचार्ज थोड़ा नहीं था, खत्म हो गया था, तो सर अभी बोल के
5: हम बहुत पीछे हो गए बहुत पीछे हो गए ना, आज तो नहीं बजेगा फरवरी।
4: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पीछे नहीं है, ठीक ही
5: है ना?
4: नहीं पूरा तो नहीं आ रहा।
5: अच्छा मैम, चलिए तो और तो वही
4: और सब बढ़िया है।
5: हमको पहचानते हैं?
4: हाँ सर, तो
5: बहुत बहुत धन्यवाद पहचानने के लिए। मैम कहीं भी रहे रेडियो को घूमते नहीं, हम करते रहते हैं और फरवाइज सुनते रहते हैं। और अपने अभी तो छात्रा आए हैं तो
4: छपरा में, मतलब कुछ काम?
5: हाँ मतलब एक काम ही शहर में है, किसी में टाइम निकल के आपसे बात कर लिया।
4: बता दीजिए,
5: आज मुझे गाना सुनाइए। गाना का नाम है इसका ही बना।
4: कौन सा?
5: इसका ही बना।
4: इसमें भी एक बार
5: खुदा
4: की लाइन बता सकते हैं?
5: गाना का नाम यही है, ऐ खुदा जब बना तो उसका ही बना, ऐसा गाना है। यही वाला।
4: और गाना सुना
5: जी आपको सभी आज के सभी दोस्तों को आज के एक नया ऑनलाइन कर देना है गाने का, तो उतना नहीं मतलब
4: बहुत शोर हो रहा है पीछे आपके।
5: इधर बराकुल का पूजा चल रहा है ना?
4: अच्छा हाँ हाँ,
5: आज कुछ है ना आप लोगों का? एक और बजेगा
4: आपको आज, नहीं तो कल बज ही जाएगा।
5: और वो फ्राइडे वाला रिपीट नहीं करता है?
4: नहीं, फ्राइडे वाला नहीं रिपीट नहीं होता है,
5: इसलिए उस दिन मेरा हुआ था एक
4: बजा पर रिपीट नहीं हुआ।
5: बजा है लेकिन रिपीट नहीं हुआ। चलिए तो चलते चलते धन्यवाद बोलेंगे और ये बोलेंगे आइए
4: ये तो थे आज फर्स्ट पहली बार में ही आपका कल पूरा कर दिए थे।
5: कल नहीं, कल तो
4: हाँ, और दिन भी तो बोलते हैं तो करते हैं, आपका पहले बज जाता है।
5: मतलब आज मेरा एक सप्ताह हो गया ना, इसलिए बोले।
4: कोई बात नहीं, आइए बजेगा आपका भी
5: आज। मस्त जुड़ते हैं लेकिन बाइक के साथ।
4: ओके जी।

0: हेलो मैडम, नमस्कार
1: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: जी साथ में आपको भी स्वागत है। गाना सुनो आइए। हम
1: बता दीजिए कौन सा।
0: और आने से उसको आई बाहर बड़ी मदानी है।
1: और गाना सुनाओ के बाद।
0: गाना सुनाओ के बाद ये पहले ना, पहले आप पहले रेडियो को सुनने वाले गाने पहले उन लोग, बाद में आपको।
1: अच्छा
0: बाद में आपको और आपके बाद सोनी जी को यही गाना बताती हूँ की आपको गाना उठा वही पसंद लेती है गाना। आप खुद गाना बजाते हैं तो आपको कहने की क्या जरूरत है।
1: क्योंकि हम खुद ही सुन लेते हैं।
0: सुन लेते हैं लोग सारे आदमी कहते हैं मैडम आपको आप फलाने को फलाने को फलाने। ये नहीं जानते हैं कि लोग पहले मैदान ही सुनते हैं।
1: सही बात है, पहले हम सुनते हैं।
0: कौन है क्या जरूरत। जितने रेडियो प्रेमी है लोगों की आवाज उठाए वो लोग सुन रहे हैं ना। हमारा रेडियो जाई पकड़े है ना, सबको अच्छा लगे, तब जो है भारती जी को स्वागत किया जाए गाना सुनाने के लिए। ठीक है मैडम।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे?
3: अच्छा है,
2: क्या हो रहा है आपके?
3: अभी तो अच्छा, फोन लगा 12 बज रहा था।
2: अच्छा, इतना टाइम लग गया?
3: बड़ा टाइम, सब कॉल किया। तो और समाचार बताइए कैसे है?
2: और समाचार ठीक है, आप सब ठीक है ना?
3: हम लोग ठीक है।
2: तो आज बता दीजिए फरमाइश अपनी।
3: फरमाइश राष्ट्रीय गाना,
2: गाने के बोल
3: बड़ा।
2: अच्छा, और सॉन्ग सुनाना भी है
3: जी आपको? जितना आरजे है सब, जितना श्रोता दोस्त सुनते सबके साथ।
2: चलिए ठीक है, गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
3: जी मैडम, धन्यवाद।

0: हेलो, सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू मैम। भारती मैम बोल रही है। एक बार तो पूरा कॉल रिंग होके कट गया मैम, ऐसा क्यों?
1: कुछ काम कर रहे थे।
0: क्या सर, क्या हाल चाल है मैम?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: हम लोग तो अच्छे हैं, आप अच्छी है ना?
1: हेलो,
0: योर वॉइस योर चॉइस चलेगा ना?
1: जी बिल्कुल चलेगा।
0: आज हमको सॉन्ग सुना दीजिए, देखो दिन मूवी से, जब न माना दिल दीवाना कलम उठा के जाने जाने।
1: कौन सी मूवी है?
0: देखो दी।
1: अच्छा,
0: काजल का
1: गाना कौन सा बोले हैं?
0: जब न माना दिल दीवाना कलम उठा के जाने जाना, खत मैंने तेरे नाम लिखा। सुनाना है सबसे पहले आपको, सोनी मैम को, समरान रशीद को, राघव जी को, दिलीप भाई को, हरी को, असलम भाई को, किरज भाई को, और संसाद भाई को, बुखरा नंदी को, और जो भी रेडियो इंजिन जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए मैम, जुम्मा मुबारक मेरे तरफ से सभी को बोल दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: ओके मैम, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। रेडियो रिमझिम में कॉल किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello.
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी दीदी, नमस्ते।
6: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 FM में।
7: जी थैंक यू। कैसी हैं?
6: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
7: मैं भी अच्छी हूँ। वैसे आप बोल कौन थी हैं?
6: पहचानिए कौन?
7: भारती दी।
6: हाँ,
7: तब और सब कैसा है?
6: और सब बढ़िया है, आप सब कैसे हैं?
7: हम भी बढ़िया है। तब खाना हो गया है?
6: हम्म,
7: अच्छा है। मुझे सॉन्ग सुनना है।
6: बताइए कौन सा?
7: बात कुछ

0: नफरत का पिला दिया, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। यही वाला सॉन्ग सुनना
1: जी, और गाना सुनाना है।
0: जी आपको, सोनू सर को, सोनी दीदी को और जितने सुनने वाले हो इन सभी को। वैसे दीदी मेरा ना दिन बर्थडे था, ठीक है, तो सोचे थे आने के लिए घूमने रेडियो रिमझे में, लेकिन जा नहीं सके,
1: क्यों, क्या हो गया था?
0: टाइम नहीं मिला ना।
1: आप सोनी ही ना बोल रही हैं?
0: हाँ
1: हाँ
0: तो पहचान गई क्या दीदी?
1: हाँ,
0: कोई दोस्त रहता लो तब ना साथ में जाने में थोड़ा।
1: अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ तो हम लोग हैं ही,
0: जी तो फिर
1: गाना
0: मेरा सॉन्ग। हाँ
1: प्ले करते हैं।
0: जी, थैंक यू,
1: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। कभी

0: हेलो जी नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार रेडियो छोटा संग्राम सोना मंडिया पूर्वी चंपारण बिहार से संजय कुमार साहब।
1: जी कैसे हैं आप?
0: जी मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। कहीं ना कि आप बारिश रिमझिम रिमझिम हो रही है। हम लोग में अपना है पूछे हैं आपसे बात कर रहे हैं। मौसम ठंडा है सुहाना है।
1: चलिए बढ़िया है। तो कौन सा गाना सुनना
0: है
1: आपको?
0: आज जब बारिश हो रहा है तो बारिश वाला सुना दीजिए। बरसा पानी इसी के ज्यादा जोर से नहीं बारिश हो रहा है।
1: अच्छा
0: जी फुहार चल रहा है।
1: पर गाना सुनाना भी है किसी को?
0: सबसे पहले आपको आज आपको रेडियो मिल गया संपन्न परिवार को दोस्त दोस्त में हो गया सखाने से मोहम्मद साबिर जी राम लक्ष्मण को सुहाग दिया मैंने कला बैकोटम से नरे सोहनी दीपक दास उदय बैंक ठाकरे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से राजिंदर जादव भारती संत लाल गौतम उत्तर प्रदेश मऊ से हमारे नाम से ज्यादा पहचाने तमाम दोस्तों और विशेष करके रेडियो रिमझिम से मोहब्बत करने वाला संपूर्ण परिवार को खास करके मोहम्मद लाल अंसारी मधुबनिया था विशेष करके उनको सुनाते हुए रामचंद्र मुखिया लगाए हमारे नाम से जाना पहचाने तमाम दोस्तों सुनाते हुए अभी आपसे मिलेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार। रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
2: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।